0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

पुराण का प्रसंग है, यह तुम लोगों ने कई बार सुना है। कि देवता और असुरों के बीच में बड़ा भारी घमासान युद्ध होता रहा, और जब भी युद्ध हो तो देवता लोग तो हार जाए, असुर लोग ही जीते। उन असुरों में से एक असुर था तारकासुर। असुर का नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव होगा नहीं, कभी भी न मरना हो तो तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, वह तो वेदांत से ही प्राप्त होगा। वो चीज तो ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो सकता है और किसी साधन से नहीं। और क्योंकि तू असुर है इसलिए ब्रह्म विद्या में तेरी वृत्ति जाएगी नहीं। तो दो विकल्प हैं, या तो ये असुरी वृत्ति छोड़कर दैवी संपद युक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो अमर हो जाएगा। अब असुरी वृत्ति को छोड़ नहीं सकता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा नहीं, इसलिए तू अमर तो हो ही नहीं सकता है। और अमृतत्व न कर्मणा न प्रजया धनेन एकेनेव अमृतत्वं मानसु, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न धनेन न प्रजया न कर्मण न प्रजया न धनेन। फिर उसने दोबारा तपस्या की, बोल भाई, बोले हमको तो अमृतत्व चाहिए न मरे। बोले ऐसा होगा नहीं, तो बार बार तपस्या करता है और वो वरदान से दिया नहीं जा सकता है। अमरपना वरदान से दिया नहीं जा सकता। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में इति नान्य पंथा विद्यते अनाय। अपने स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति और उपायों से संभव नहीं है। एक काम कर सकता है तू, निमित्त मृत्यु मांग, विचार कर और निमित्त मृत्यु मांग, ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। अभी बुद्धि लगा तो असुर तो था ही, चलो बुद्धि लगाता हूं। क्या बुद्धि लगाए? बोले इस समय भगवान शिव की पत्नी सती मर चुकी है, है नहीं? और पत्नी मर गई तो शिव दूसरे शादी तो करेंगे नहीं, है? पत्नी मर गई दूसरे शादी करेंगे नहीं, और पत्नी वियोग के बाद उसके लाश को तो लेकर घूमते रहे भगवान विष्णु ने ही अपने सुदर्शन चक्रों से, चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहां गया। 52 जगह जो 52 टुकड़ों में बिखर गए वही 52 शक्तिपीठ हो गए, है ना? ये भी एक जगह, ऐसा भी पुराण में प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग आता है सती के शरीर को ढो ढो कर चल रहे हैं तो भगवान विष्णु बुरा नहीं मानना, मक्खी का रूप धारण करके सती के शरीर में जाकर विष्टा कर दी, और उसके बाद वो शरीर धीरे धीरे सड़ के टुकड़े टुकड़े में गिर गया। ये भी पुराण में प्रसंग है।

0: बुरा नहीं मानना, इसमें कोई किसी की भावना में ठेस लगने की बात नहीं है, ये तो ईश्वर की लीला है ना, ये भी प्रसंग है। अब भगवान विष्णु को सुअर बनने में आपत्ति नहीं है तो मक्खी बनने में क्या आपत्ति है, बोलो? उनको तो कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो तुम्हें हमें है, हमारे भगवान को सुअर बना दिया, हमारे भगवान को मक्खी बना दी है? अरे बाबा, सारा सृष्टि ही उनकी है, सब रूप उनका है, उन्होंने सब चीज की उपयोगिता समझकर सब रूप बने, समझे कि नहीं? सब वस्तु की उपयोगिता समझकर ही सब रूप बने हैं, सड़ाने वाले भी वही बने हैं, सड़ने वाला भी वही बने हैं, उसके अलावा तो दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं, उसकी लीला है, इसमें अन्यथा नहीं लेना। तब जब सती का शरीर खत्म हो गया तो वो तो समाधि लगाकर बैठ गए कैलाश में। तो तारकासुर ने विचार किया कि अब ये कभी भी समाधि से उठेंगे नहीं, तो इनका बेटा होगा ही नहीं, ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो और से न हो। लग जा, अब ना शिव का पुत्र होगा ना मैं मरूंगा, बस। असुर की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, असुरों की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, है? हम लोगों की बुद्धि तो बहुत आगे पहुंचती है, हमारे यहां असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, समझ गए ना? मायायाम सर्वसंभव, शंकराचार्य जी ने तो यूं कह दिया है, मायायाम सर्वसंभव, माया यदि आगे है तो माया के चलते असंभव तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तो माया को शंकराचार्य ने कहा अघटित घटना पटी ऐसी माया। अभी तक कोई भी घटना असंभव हुए हुए घटना को भी संभव करके दिखावे, उस तत्व का नाम तो माया के सामने तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये असंभव है ना? और क्योंकि असुर माया के रहस्य को नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं असंभव है, असंभव है, है? बोलो। पत्ते में वीर्य को धारण करके पत्ते से बच्चा पैदा करना संभव है कि नहीं? कौन पैदा हुआ पत्ते से? द्रोण। द्रोण का अर्थ पत्ता और उसमें वीर्य धारण करके जो पैदा हुआ द्रोणाचार्य, ले लीजिए, क्या असंभव है? बोलो। भगवान विष्णु से बेटा पैदा हुआ सकता है कि नहीं? विष्णु मेल है कि फीमेल है? हैं? विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, हैं? हो गया ना? अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी किससे पैदा हुए? हरिहर पुत्र स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, हरिहर पुत्र अय्यप्पा, ले जी। मां विष्णु, बाप शिव, क्या असंभव है? बोलो। दुनिया में असंभव है? मायायाम सर्वसंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। मछली ने हनुमान का बेटा पैदा कर दिया कि नहीं? मकर ध्वज, बोलो क्या क्या इतिहास है। अब बोले कैसे संभव है? अरे संभव है, मायायाम सर्वसंभव, माया में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते थे, लेकिन तारकासुर इस बात को नहीं जानता था। तारकासुर समझता था कि संभव ही नहीं है शिव का बेटा होना, ब्रह्मा जी समझते थे कि संभव है, लेकिन बोला नहीं तारकासुर के सामने, बोलते तो फिर मुकुर जाता वो बोला नहीं, बोले तथास्तु, ओ तारकासुर तो खुश हो गया, अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता बेटा, वरदान मिल गया है, शिव के पुत्र के अलावा और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं शिव का पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मर नहीं सकता, अमर हो गया। तब तो पूरा चारों तरफ आतंक फैलाने लग गया। तो सब मीटिंग हुई केंद्रीय कमेटी का, है तो विष्णु भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, इंद्र कुबेर वरुण सब पहुंच गए। अब ये तारकासुर को मारेंगे कैसे, तो बोले उसका बेटा शिवजी का बेटा होना चाहिए, तो शिवजी के बेटा के लिए तो शिवजी की शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए शिवजी को समाधि से जागना पड़ेगा, शादी करने के लिए शिवजी को अपनी योग्य उनको पसंद दिखी लड़की चाहिए, लड़की कहां मिलेगा। और उनका प्रतिज्ञा, शिवजी की प्रतिज्ञा है, सती के अलावा दूसरों को मैं पत्नी बनाऊंगा नहीं, बस वो तो प्रतिज्ञा करके चले गए। नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, मायायाम सर्वसंभव, वो जो सती है वो पर्वत की पुत्री होकर पैदा हो चुकी है, उनको सती चाहिए ना, सती तो पैदा हो चुकी है, बेटी तो कन्या तो पैदा हो गई, पहले तो वो समाधि से जगे तब ना शादी करेंगे। लड़की खोजने का काम मेरा, किसका, नारद जी का, और समाधि से जगाएगा कौन। कामदेव ने कहा कि वो काम मेरा, मुझे छोड़ दो, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है, बड़े बड़े का समाधि हमने तोड़ दिया है, वो कौन होते हैं, ये काम मैं करूंगा। तो नारद जी गए पर्वत में, मैनाक और पर्वत को कहा तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती है, वो अभी तुम्हारी बेटी पार्वती होकर पैदा हुई है, ख्याल ये रखना कि शिव के अलावा दूसरों को देना नहीं है। पर्वत ने कहा कि शिवजी तो समाधि में बैठे हैं, कैसे शादी करेंगे। बोले वो सब तैयारी हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो, एक काम करो, शिवजी भी यहीं कैलाश में है, पड़ोस में ही है, तुम रोज पार्वती को शिवजी के यहां कैलाश में झाड़ू झूड़ू लगाने भेज दिया करो, उनके समाधि स्थल में आसपास में जंगल में बढ़िया फूल तोड़कर ले जाके रखें, बढ़िया फल रख दें, झाड़ू झूड़ू लगाए, ये सब वातावरण सेवा करने लगा दो उनको। बोले ठीक है आप कहते हो तो पार्वती की त्रिटी लगा दी, और पार्वती को ही निमित्त बनाकर कामदेव पहुंच गया वहां। अब इसी के आधार में शिवजी को मैं जगाऊंगा। उसने फिर पंचबाण छोड़ दिए कामदेव ने, तो भगवान शिव को विक्षेप हुआ, आंख खोल कर देखा समाधि से, आंख खोल कर देखते ही तो वो तो कामदेव तो खुश हो गया, हे शिव जी ने आंख खोल ली है, समाधि टूट गया है, हे मैं विजय हो गया, मैं जीत गया। उद्दंड की तरह प्रार्थना करनी चाहिए थी, और उद्दंड की तरह हुआ, देवताओं को सुनाने लगा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ, बोले तुम्हारी समाधि तोड़ने में मैं सफल हुआ। क्यों, बोले ये तो उन्होंने तीसरा खोला और राख जा खत्म, तुरंत ही राख हो गया। अब तो सभी देवता आकर शिवजी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने समाधि खोली ली है, ये प्रयोजन से ये सब किया है षड्यंत्र, अब तो आप पार्वती से शादी कर लो, एक बेटा पैदा कर दो, और उसके नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध हो और तारकासुर मरे, मुख्य समस्या ये है। शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या से करूं? क्यों इच्छा नहीं महाराज? कामदेव मर गए और कहां से इच्छा होगी? बोलो। बोले महाराज इसको जन्म दो, इसको जीवन दो भाई। बोले एक ही शर्त पर, ये आज से अनंग होगा, बिना शरीर का होगा। इसलिए कामदेव का नाम क्या है? अनंग। अंग वाला नहीं होगा, कोई शरीर इसका नहीं रहेगा, अनंग होगा। तो अनंग होगा तो ये है कैसे पता चलेगा? बोले जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना हा? जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी वह इसका स्मरण करे, वह उपस्थित हो जाएगा, उसका प्रयोजन पूरा कर देगा ये। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा स्मरा। अनंग है इसलिए शरीर नहीं रहेगा, और स्मरण करते ही उपस्थित होता है इसलिए इसका नाम स्मरा हो गया। तो कामदेव का नाम स्मरा है, उसको हरण करने के कारण शिवजी का नाम स्मरा हरा पड़ा। तो उसी को संबोधन किया, तब पार्वती इसका शादी हुई। कामदेव अनंग होकर जीवंत हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण करते ही पार्वती से कार्तिक भगवान पैदा हुए, और कार्तिक को सेनापति बनाकर देवताओं ने युद्ध किया तारकासुर से, और तारकासुर कार्तिक भगवान के हाथों मारा गया। तो तब से लेकर शिव जी का नाम स्मरहर पड़ा। हे स्मरहर, दूसरा संबोधन है वृषभाधिरूढ़। वृषभ माने नंदी, उसमें अधिरूढ़। भगवान हमारे बंबई के सेठ लोग बरसई पीछे गाड़ी चेंज करते हैं, है ना? कंपनी से कोई नया मॉडल गाड़ी आ गया, इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो पहले वाली गाड़ी एक वर्ष तक पुराना मॉडल, वो पुराना हो गया उसको फिर हटा दिया, नया मॉडल फिर खरीदो। फिर एक साल के बाद कंपनी फिर और कंपनी नए नए मॉडल तैयार करते, फिर उसको हटा दो फिर। अरे हमारे बंबई के सेठ लोग हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। हे शिवा, सत्ययुग से तुम एक ही वाहन में चढ़ रहे हो। शंकराचार्य जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ययुग से लेकर आज तक वृषभारूढ़ एक ही वाहन है, कोई दूसरा वाहन ही नहीं मिला तुमको है? भगवान ने कहा कि क्या करूं, दूसरा वाहन है ही नहीं मेरे युग, तो मैं किस में आरूढ़ हूं? बोले महाराज दूसरा वाहन मैं लाऊंगा, मैंने तैयार की है तुम्हारे लिए, आपके लिए नया मॉडल। क्या है बेटा? कल्याणिनम सरस चित्र गतिम सवेगम। देख लो तुम्हारी नंदी, ये तो पुराने मॉडल का है, इसमें तो स्पीड है ही नहीं, गति नहीं है, बेग ही नहीं है। बहुत कोशिश करके चलाओ तो 40 किलोमीटर पर घंटे की भी ये इसकी एवरेज नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाड़ी आ गए हैं भाई, वाह क्या पूछो नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, मुश्किल से 40-30 किलोमीटर के घंटे के स्पीड ही नहीं थी। तो बोले यार सवेगम, अरे भाई इस वृषभ से हजारों गुना तीव्र गति से दौड़ने चलने वाली आपके लिए मैंने वाहन तैयार किया है। कौन है भाई और उसकी विशेषता क्या है? कल्याणिनम। ऐसा नहीं है कि अपने सवारी, अपने में सवार करने वाले सवारी का तीव्र गति से दौड़ने के कारण भी कभी दुर्घटना ग्रसित होने वाली नहीं है। आजकल तो जितने तीव्र गति के गाड़ी बन गए उतने ही दुर्घटना बढ़ गए कि नहीं बोलो है? पहले के 30 किलोमीटर के एवरेज की गाड़ी थी तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं था, अब 100-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, है? बिना मौत के मरते हैं। कल्याणिनम अपनी सवारी का हर हालत में सुरक्षा करती है। सरस चित्र गतिम सवे गम है। कैसे? अभी सुना है कि एप्पल कंपनी ने नया गाड़ी तैयार किया है जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, गूगल ने जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं, क्लच नहीं, कुछ नहीं, बोलो, डिजिटल है, उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस भर दो, जीपीएस की तरह जीपीएस उसमें भर दो, वो जीपीएस ही उस गाड़ी को चलाए, आप आराम से पिछले सीट में बैठो, वो उसको सब पता है, सड़क उसको पता है, कहां ब्रेक लगानी है, क्या है, किधर है, आगे क्या है, सब सेंसर लगा दिया है, वो अपने आप ही जाने। और तुम ऑफिस में पहुंच गए, घर में भेजनी है उस गाड़ी को, घर का एड्रेस उसमें भर दो और छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घर जाएगी, अपने घर, दूसरे के घर में नहीं जाएगी वो, है? गूगल ने तैयार की है मोहनीश, गूगल कंपनी ने तैयार कर लिया है, अनुमति, ट्रायल भी हो चुका है, अब वो कमर्शियल रूप में उसको प्रोडक्ट करने की अनुमति ही उसको मिलनी चाहिए प्रोफेशनल रूप में, लेकिन तैयार हो चुका है। शंकराचार्य जी कहते हैं हमने भी ऐसी गाड़ी बनाई है, सर्वेंगितम, इशारे से चलने वाली, सर्व इंगित, इंगित माने इशारा, तम वहां बैठने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे, जैसा संकल्प करे वैसे गति, जहां संकल्प करे वहीं पहुंचे, बोलो, सर्व इंगित ज्ञम, सवारी जो संकल्प कर उसके भावना को समझ कर उसके अनुसार गति पकड़ने वाली, क्या सुंदर गाड़ी है। सर्वोंगितज्ञम अनघम, पेट्रोल भी नहीं, घास भी नहीं, तुम्हारी नंदी तो बड़ा भारी घास खाती है, अनघम, तो घास खाने के बाद तो तुम्हारी नंदी तो गोबर भी तो करेगी, करेगा, तो अनघम, न घास खाना है न गोबर करना है उसने, और कोई पोल्यूशन वो छोड़ नहीं सकती है, क्या अनघम, निष्पाप, निर्दोष। ध्रुव लक्षणाढ्यम, अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त है। क्या है महाराज, ऐसे सवारी कहां से तुमने तैयार कर ली? हे स्मरारे चेतस्तुरगम अधिरुह्य, चरा, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा मैंने तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा, चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, उस पर चढ़कर तुम भ्रमण करो, चरम माने भ्रमण करो, और तुम इस नंदी में चढ़कर तो अमेरिका कैसे जाओगे? स्वर्ग पाताल तीनों लोक में विचरण करना है आपको, खाली कैलाश में थोड़ी बैठना है। चलो जहां इच्छा हो वहां जाओ, बढ़िया सवारी है। चेतस तुरंगम अधिरुह चरस मरारे नेत समस्त जगताम, ले समस्त जगताम नेता, घुमो खूब घुमो खूब घुमो, क्योंकि सबको चलाना है, सब जगह पहुंचना है, सबको देखना है, है तो आपको बढ़िया सवारी हुए बिना ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। वो सवारी हमने नया लेटेस्ट मॉडल का तैयार किया है, वो चेतस तुरग, मेरा चित्त रूपी घोड़े में आप सवारी होकर चलो महाराज। वाह शिवजी तो खुश हो गए, महाराज क्या सुंदर, बिना पैसा कौड़ी के घोड़ा मिल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदा विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिम्न स्तोत्र प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री मुक्तानंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: प्रतिदिन यहाँ वेदांत का स्वाध्याय करवाते हैं और आप लोग जिनसे सुनते हैं ऐसे पूज्य स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज, और उसके बाद पूज्य महाराज जी के एक ग्रंथ का विमोचन है जो पूज्य जगत गुरु जी महाराज के कर कमलों से होगा और उनका अध्यक्षीय भाषण होगा। आप लोग शांति से बैठे और पूरे कार्यक्रम का आनंद लें जिस प्रकार से अभी तक लिया है। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
3: सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागो भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय अध्यक्ष महोदय एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी गिरिजान जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी प्रयाग पीठाधीश्वर जी महाराज एवं दूसरा नाम क्या महाराज हरितीर्थ जी महाराज, इनको तो मैं विद्यार्थी की अवस्था से पार्ला में जानता हूं, पार्ला से जानकारी है, एवं रामायण जी महाराज एवं इस आश्रम के ट्रस्टी समुदाय को तथा भक्तवृंदों को तथा श्रोतावृंदों को मेरा आंतरिक शुभ आशीर्वाद। देखिए आज अखंडानंद क्या स्मृति क्या माना रहा है
4: आनंद
3: जयंती
4: आविर्भाव
3: दिवस। देखो भगवान का आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, भगवान का एक स्फूर्ति अवतार है, एक स्फूर्ति अवतार, एक प्रवेश अवतार, एक आवेश अवतार और आविर्भाव दो प्रकार के होते हैं, एक लीला अवतार और एक मर्यादा अवतार। कितने होते हैं? लीला अवतार और मर्यादा अवतार और एक आवेश प्रवेश। जैसे द्रौपदी के वस्त्र के रूप में अवतार भगवान का हुआ कि नहीं? कौन सा अवतार माना जाता है? आप सुनते हो द्रौपदी के वस्त्र के रूप में भगवान का आविर्भाव हुआ, आवेश हुआ कि नहीं? वस्त्र में प्रवेश किया, वस्त्र को बढ़ाया, नृसिंह भगवान के रूप में अवतार हुआ, स्फूर्ति अवतार। हाँ, जल के अंदर प्रवेश होता, अग्नि का प्रवेश होता है, जल के अंदर जैसे अग्नि का प्रवेश ऐसे भगवान जो है ना प्रवेश किया द्रौपदी के वस्त्र में, जो आवेश प्रवेश स्फूर्ति तीन अवतार तो हो गया, परंतु आविर्भाव दो प्रकार के होते हैं, एक लीला अवतार और एक मर्यादा अवतार। तो भगवान जो है ना लीला अवतार क्यों? लीला करने के लिए आते हैं। मर्यादा अवतार के रूप में भगवान राम आते हैं, परंतु स्वामी अखंडानंद जी महाराज किस रूप में आए हैं आप लोग बताओ? अखंड आनंद, आनंद के रूप में आपके बीच में आए हैं। अखंड आनंद रूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तावत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। आप लोग पाठ करते हैं भागवत में, सचित आनंद कहो अखंड आनंद कहो, बात एक ही है, जो सत है वो चित है, जो आनंद है वही आनंद अखंड आनंद रूप में है। उस अखंडानंद महाराज का आविर्भाव हुआ, ऐसा आविर्भाव युग युग में ही होता है, हर एक युग में नहीं होता है, जब युगावतार माना जाता है। क्यों? जब महापुरुष संसार में आते हैं कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं, वो लीला के माध्यम से संसार को उद्धार करने का कोशिश करते हैं, संसार को संसार से दुखी मनुष्यों को आनंदित आनंद वितरण करना चाहते हैं। ऐसे अखंडानंद जी महाराज जी के जैसे महापुरुष का संसार में आना, संसार को प्रभावित करना। अभी मुक्तानंद जी महाराज जी ने क्या बोला? मुक्तानंद जी है ना, मुक्तानंद जी का हमने अखंडानंद जी को देखा नहीं था, परंतु अखंडानंद जी के संसर्ग में रहने वाले गिरीशानंद जी महाराज जी को देखा, और गिरीशानंद जी महाराज जी के संसर्ग में आकर के कहते मैं अखंडानंद जी को जाना और उनसे प्रभावित हुआ। देखो संग क्या करते थे, संग किया गिरीशानंद जी ने, और उस गिरीशानंद जी के संग करके मुक्तानंद जी मुक्त हो गए। वो तो ठीक है, मुक्तानंद जी महाराज मुक्त हो गए, नाम ही रहा मुक्तानंद। मैं तो गिरीशानंद जी को ही आपका आराध्य मानता हूँ, गिरीशानंद जी आराध्य है, अखंडानंद जी नहीं है। जो अखंडानंद जी आराध्य नहीं, आराध्य कौन? गिरीशानंद जी है। तो गिरीशानंद क्यों? संग का ऐसा प्रभाव होता है, जो जिसका संग करते हैं, संगात अशेषा प्रभवंती दोषा, संगात अशेषा प्रभवंती गुणा। संग से दोष भी आता है, संग से गुण भी आता है। अभी देह का संग करके तो बंधानंद बना, और गिरीशानंद जी के महाराज जी के संग करके मुक्तानंद जी बन गए। तो अभी मुक्तानंद जी महाराज गिरीशानंद जी महाराज का संग छोड़ नहीं सकता, याद रखना। ये संग इनको वो अखंडानंद जी के पास पहुंचाएगा, समझे गए ना? ये संग अखंडानंद जी के पास ही पहुंचाएगा। तो अखंडानंद जी पूछेंगे गिरीशानंद जी कौन है, तो गिरीशानंद जी क्या जवाब देंगे?
4: हमारे मित्र हैं।
3: गिरजा नहीं कहेंगे मेरा मित्र है। अच्छा तो और कोई मित्र है? मुक्तानंद का भी मित्र है कि नहीं कोई? अभी मुक्तानंद जी अपना आश्रय ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा? अरे साथी सहयोग ढूंढेगा कि नहीं? आप तो उनको मुक्त करने वाले हैं। इसीलिए ये परंपरा चलते हैं। तो महापुरुष का अवतार युग युग में होता है, हर एक युग में। अखंडानंद जी महाराज जी के जैसे अवतार पुरुष मिलेगा नहीं आपको। जिस अवतार पुरुष के संग से इतना यहाँ तक अभी तक काम दिखता मुक्त हो गए बहुत से, नहीं तो यहाँ हाल में जगह नहीं होती थी पहले। इस हाल में जगह नहीं होती थी बैठने को। हाँ पहले सन हमने सन 80-82 में देखा यहाँ, हाँ हाल में जगह नहीं होती थी, इतना भर रहते थे। हमारे बच्चे वह सामने आकर बैठते थे, सबसे पीछे आएंगे सामने, सबसे सामने बैठेंगे, तो उनके लिए कहते राधा जनक आ रहा है। हमने बोला राधा जनक आ रहा है भाई, जगह दो। जनक जी के जैसे सबके सामने आकर बैठते थे और रोज आते थे, एक दिन भी नागा नहीं करते थे। अभी जैसे हमारे क्या है ना, गिरीश भाई, तो गिरीशानंद को देख करके गिरीश भाई मुक्त हो गए। तो हमारे प्रतिनिधि तो आ गया अभी। हाँ गिरीशानंद जी, गिरीश भाई कभी बनारस गिरीश में गिरीश से मिलने के लिए बनारस चले जाते हैं। हाँ बनारस जाते हैं ना, किससे मिलने के लिए? भगवान शंकर के मिले ना गिरीश, वो भी तो गिरीश है ना। अपने मित्रों से मिलने के लिए चले जाते कभी कभी। तो ऐसे ही यहाँ एक बैठता था, ओ क्या नाम ये प्रकाश का पिताजी, प्रकाश कुशल भाई, कुशल भाई स्वाध्याय में बैठते थे यहाँ, हमेशा आते थे। तो कुशल भाई चला गया तो आपने प्रतिनिधि प्रकाश को छोड़ करके गया, और प्रकाश जो है ना अंधेरा कर देता है, वो कुर्सी खाली पड़ी रहती है। मैंने कहा कुर्सी को खाली नहीं मत रखना, तुम्हारे पिताजी का आसन को पूरा रखना। परंतु प्रकाश भाई कभी कभी प्रकाशित करता है और नहीं तो अंधेराइज कर देता है। कहते अभी पिताजी को ढूंढने चला जाता है ना कभी कभी, तो अंधेरा तो रहेगा ना। तो इसलिए बच्चू भाई जो है ना जगह में हमारा गिरीश भाई को हमेशा आना चाहिए, परंतु करेंगे आप। तो महाराज जो है ना अखंडानंद जी महाराज, अखंडानंद सच्चिदानंद स्वरूप, अखंडानंद में या सच्चिदानंद में अंतर क्या है बताओ मेरे को? जो अखंडानंद जी है और जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो क्या है? वो दोनों एक है कि दो है? हाँ तो अखंडानंद जी महाराज यहाँ भी बैठा है, क्यों आपके अंदर आनंद आए कि नहीं? आपके इतना तो तालियां बजाए मुक्तानंद जी और गिरीशानंद जी के जो है ना प्रवचन में, आपने हंसा कि नहीं? हंसा रोया कि हंसा? तो हंसा जो है तो आनंद आया, तभी तो हंसा ना। रस मिला न रस वही शहर रस मिल अब तो आनंद ही भवती। आप लोग को आनंद कहाँ से आया? रस स्वरूप ब्रह्म को जानने के बाद भी तो आनंद आया ना। तो आनंदा दिए वे खोलो इमान भूतानी जायंती आनंद न जाता न जीवंती आनंदम प्रयंती अभिषम भिषण। आनंदम क्या है? ये आनंद ब्रह्म है। तो अखंडानंद की हो, ब्रह्मानंद की हो, सच्चिदानंद को बात एक ही है। कहते आप लोग जो है ना ब्रह्म ही सम शांत सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो, ब्रह्मानंद को लेकर के जाना। रस वही सहर रसम ये लब्ध आनंद ही भवती। रस ब्रह्म का नाम है, रस गन्ने का रस नहीं समझना। गन्ने का रस है, मौसम्बी का रस है, कौन सा रस है? गोपियों में कौन सा रस है? गोपिया कौन से रस से रसान्वित होकर के भगवान कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ती है? वो बोला कृष्ण को निचोड़ करके रस निकाला। अरे मौसम्बी का रस निकालते कि नहीं, ऐसे कृष्ण का रस कैसे निकालोगे? हमारे महाराज जी बोलते हैं कृष्ण रस। ब्रह्मानंद जी नहीं आए, अरे ऐसा नहीं, कृष्ण कोई रस नहीं होता है, त्रिभुवासक नरस निवृत्ति वासक तय ब्रह्मानंदम कृष्ण वित्तीय अभिधीयते। कृष्ण तो है, ब्रह्मा का नाम ही है, उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारण है वही इसका नाम ही है कृष्ण। इसीलिए कृष्ण कहो ब्रह्म कहो बात है कि या कृष्ण में ब्रह्म में अंतर नहीं है, जो अंतर करके क्या उपासना के लिए उपाधि के लिए भिन्न कर देता है, वास्तव में कोई दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों? कृष्ण बंदे जगत गुरु, आप कृष्ण को जगत गुरु बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो जगत के गुरु आपको मुसलमान मानते हैं क्या? कृष्ण को जगत गुरु कैसे बन गया? इसे मानता है क्या? इसे मानता है कृष्ण को गुरु? ईसाई मानता है कृष्ण, मुसलमान मानता है क्या? मुस्लिम मानता है क्या? तो कृष्ण कैसे जगत गुरु हो गया? कृष्णम बंदे जगत गुरु हम बोलते हैं, परंतु कृष्ण के रूप में नहीं मानते, आनंद के रूप में मानता है कि नहीं? मुस्लिम आनंद मानता है कि नहीं? कृष्ण आनंद मानता है कि नहीं? तो आनंद ही तो ब्रह्म है, आनंद से संसार उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित, आनंद में लय होता है, तो आनंद ही तो ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्मानंद रूप स्वरूप आज महाराज अखंडानंद जी महाराज जी के आविर्भाव का प्रकट प्राकट्य भाव का प्रकट होता है। कभी कभी कभी कभी ऐसे महापुरुष संसार में आते हैं और संसार को प्रभावित करके चले जाते हैं। इस समय जो महाराज चले नहीं गया, हम सबके रूप में, सबके भीतर आनंद के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में विद्यमान है। हमारे जो है ना, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने बोला, मेरे को तो अखंडानंद जी महाराज जी से संबंध हुआ पुस्तकों के माध्यम से, एक परंपरा संबंध है। हमने पुस्तक पढ़ा, पुस्तक में अखंडानंद जी बैठा है, अखंडानंद जी के साथ हमारा संबंध हो गया, तो ये परंपरा संबंध है। साक्षात संबंध तो स्वामी गिरीशानंद जी ने किया, गिरीशानंद जी ने अखंडानंद जी का साक्षात संबंध, एक परमात्मानंद जी थे, एक जो है ना वो भी साक्षात संबंधी है। बहुत से भक्त है, यहाँ मधुसूदन जी जो है ना, मधुसूदन जी हो, मधु भाई, ये मधुसूदन जी है, मधुसूदन सरस्वती हो ना, अभी जो आपने सुना है विद्वानों में मधुसूदन सरस्वती, ऐसे अभी 95 वर्ष के मधुसूदन जी है, मधुसूदन तिजोरी वाला है ना, तो इनका साक्षात संबंध है अखंडानंद जी महाराज जी के साथ, और परंपरा संबंध, और आपके बेटा आपके साथ संबंध करेगा, आपके साथ महाराज जी का अखंडानंद जी का साथ संबंध है, तो परंपरा से मिलेगा। आप जानते हो अखंडानंद जी? बच्चे से पूछो, बोले नहीं जानता हूँ। तो कैसे करते? हमारा पापा ने बोला है। पापा ने क्या बोला? ये गुरु जी है। ये गुरु कहाँ रहता है? विपुल में रहता है, विपुल में रहता है। तो ऐसे जान करके फोटो दिखाएंगे, आपके घर में जो फोटो है महाराज जी का, तो फोटो बच्चा को दिखाओगे, क्या देखो इसको नमस्कार करो, तो बच्चा पूछ गए कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? अभी स्वामी हमारे गुरु जी अखंडानंद जी है, तो क्या रहे से कहाँ रहता है वो अखंडानंद जी, क्या बोलोगे? प्रेमपुरी में रहता है। नहीं तो प्रेमपुरी में रहता है तो हमको ले चलो, तो प्रेमपुरी में लाकर किसको दर्शन कराओगे? इस सत्संग में बैठा के सुनो, यहाँ ये परंपरा संबंध से संबंधित होता है, और साक्षात संबंध तो आप लोग ने किया, जिसने किया है तो ऐसे ही आज वो महात्मा का, वो अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। वो प्राकट्य दिवस में एक बधाई गाने के लिए बोला था किसी को स्वामी जी ने, बधाई
4: हरीश भाई को
3: गाया नहीं ना,
4: प्रार्थना गाया
3: वो बधाई नहीं गाया, गाया बधाई बधाई गा महाराज जी गाएंगे। हाँ ये जगह आ गया ना, देखो हाँ गुरु जी के गुरु जी के जन्म से पहले चेला का जन्म हुआ गुरु जी के जन्म से पहले तो गुरु जी का बाधा चला गया तो देखो टाइम हो गया अपना यह विराम देते हैं हरिओम का अच्छा तरीके
5: शाम को बधाई होगी दो घंटा बिल्कुल में आप आएंगे
3: वो बीपुल में होगा बीपुल माने बहुत बड़ा बीपुल माने समझे ना बीपुल आ का है बीपुल का है ये प्रेमपुरी है ना छोटा काय है छोटा है इसमें भक्तों का समागम नहीं हो पाएगा अच्छा हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत
2: एक बधाई स्वामी जी का आदेश है बड़ी सुंदर बात कही बधाई तो वही गाएगा जो जन्म से पहले होगा गुरु से पहले चेला आ गया और आप लोग आनंद लेंगे इसके बाद हमारे अध्यक्षीय भाषण का मेरे को ज्यादा आता नहीं तो मैं कुछ गाऊंगा कुछ बजेगा तो गड़बड़ होगा

0: प्रेमपुरी में जैसे लोग आनंद ले रहे हैं ना, गोकुल में नगाड़े बज रहे थे, गोपियां नाच रही थी, ग्वाल बाल नाच रहे थे, माखन लुटाया जा रहा था, बधाई लुटाई जा रही थी। लेकिन विलक्षण बात थी, जो लूट रहे थे वो भी लुटा के जाते थे।
1: क्या बात,
0: लेके नहीं जाते थे कोई भी।

0: आप लेंगे कि लुटाएंगे? तब तो गिरीश भाई को बोलना पड़ेगा भाई, आज स्वामी जी भी झोला फैलाएं लूटने के लिए।
1: क्या

विलक्षण है यशोदा मैया का लाला आपके ब्रह्म से ज्यादा कहीं अच्छा है। आपके ब्रह्म का तो कोई रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं, किसका दर्शन करेंगे लोग? हमारे लाला का दर्शन करके करने के लिए जानते हैं आपके भोले बाबा आते हैं, शंकर जी आते हैं, कैलाश छोड़ के आते हैं, पार्वती जी आती है और आप भी बैठे हुए हैं।

0: मैं देख रहा था स्वामी जी तो बिल्कुल समाधिस्थ हो गए। हाँ वो गाना है, सांवरे हैं तब तो इतने लोग भगत बन गए, गोरे होते तब क्या होता। अब इस बधाई के बाद सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव का एक ग्रंथ जो पुनर्मुद्रित हुआ है भक्ति योग, श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय पर बड़ा सुंदर प्रवचन है, वो हमारे ललित भाई पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के कर कमलों में देंगे और उसका लोकार्पण होगा। सभी लोग तालियों के साथ ग्रंथ का अभिनंदन करें। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। और अब हम पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव के पावन आविर्भाव दिवस पर आप अपने आशीर्वचन और भाव पुष्प समर्पित करने की कृपा करें पूज्य जगत गुरु जी महाराज।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊत्वपवित्रो वाजिनी वस्वमृतमस्मि द्रविनकं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम्।

पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै संहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।

0: वसिष्ठान्ते वसदृशिकणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामम् मुदितवदनम् स्वात्मा रामम् मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे। फिर से आ जाइए, प्रथम श्लोक पढ़ेंगे पहले से। विश्वम महाराज जी के स्टाइल से, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निदांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतम यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनात् वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावेव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदम् यस्दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत्कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यस्साक्षात्कुरुणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमहिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। आप लोग प्रथम श्लोक पे ध्यान देना, आज उसकी व्याख्या चल रही है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नारायण नारायण नारायण नारायण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिहि। यहाँ मंगलाचरण में टीका में श्लोक दिया है, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़ना।
1: मंगलम दिशतु

सदाशिवः। यहां मंगलासनम है। क्या है? भगवान गणपति हमारा मंगल करे, भगवती सरस्वती हमारा मंगल करे, महेश्वर भगवान शंकर हमारा मंगल करे, और पार्वती हमारा मंगल करे। गणपति के कृपा के बिना विघ्न पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए निर्विघ्नतया ग्रंथ समाप्ति के लिए हम गणपति को प्रार्थना करते हैं, मंगल मूर्ति हमारा मंगल करे। दूसरा गणपति का नाम है बुद्धि प्रदाता, और बुद्धि भी प्रदान करने वाले हैं जिससे हमको विद्या समझ में आ जाए। दूसरा कहते हैं सरस्वती हमारा मंगल करे, मानी हमें विद्या

0: प्रदान करें। यहां महेश्वरी पार्वती को भी प्रार्थना है और सरस्वती को भी प्रार्थना है। एक अर्थ कर सकते हैं, सरस्वती हमें अपरा विद्या प्रदान करे और पार्वती जिसका वर्णन उपनिषदों में हेमवती ब्रह्म विद्या के रूप में है, वो हमें परा विद्या प्रदान करे। दोनों देवियां गणपति विघ्न दूर करे, सरस्वती अपरा विद्या प्रदान करे और पार्वती उमा हमें क्या करे, परा विद्या ब्रह्म विद्या प्रदान करे और शंकर भगवान ज्ञान और वैराग्य के दाता है। ऐसे तो कहा है बाबा जी कुछ नहीं रखते पर जो भी चाहिए आपको देते हैं। और आशुतोष, आशुतोष मानी व्हाट, बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते। विष्णु को जरा टाइम लगता है पर ये हमारे क्या है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष भगवान है। तो महेश्वर हमारा मंगल करे, महेश्वरी मंगल करे, सिद्धि विनायक मंगल करे और सरस्वती मंगल करे। मंगलम दिशतु मे विनायको, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदा शिव। ये मंगल शब्द का शास्त्र में किया गया है, ये धातु से बना है। मंगल शब्द मगी धातु से बना है, मगी सर्पणे, इसका अर्थ होता है सर्वोपि दुर्विधि अस्मात् अपसर्पति इति व्युत्पत्त्या। आत्म इंद्रिय कल्याणवाची, ये हमारे जीव के लिए और इंद्रियों के लिए कल्याणकारी है। कैसे, जो भी दुर्विधि है, जो भी अनिच्छनीय है, दुख रूप है, ये सबको हमसे अलग कर देता है। जैसे डॉक्टर रोग को रोगी से अलग कर देता है, ऐसे मंगल माने जो अनिष्ट है उसको हमसे अलग कर दे, हमें इससे मुक्त कर दे। इसे क्या आरोगताम, स्वास्थ्य क्या है आरोगताम। इसी प्रकार से सब प्रकार के जो अनिष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रोग पराधीनता, ये सब दुखदाई है, वो सबसे मुक्त करे। मंगलम दिशतु मे विनायक। अब हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक मैं फिर से पढ़ूंगा और आप लोग के पास है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोध भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम निजांतर्गतम् दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। तीन शब्द पे विचार करेंगे। ये जो विश्व है विविध प्रत्यय गम्यम प्राप्तम विश्वम, ये वृत्ति रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं। मैं यहां बैठा हूं ये बात आपके विचार से आपको मालूम पड़ता है, यहां वृत्ति उदित होती है कि स्वामी बैठा है, तब स्वामी का बोध होता है। तो दुनिया की चीज शब्द स्पर्श रूप रस गंध वृत्ति रूप हमें ग्रहण होता है, इसको कहते हैं विश्वम। अब यहां कहा निजांतर्गतम, मन में जो दिखता है वो भी आत्मा को ही मालूम पड़ता है, और मन के बाहर जो है वो भी मन में ही स्फुरित होता है, और जो मन में स्फुरित होता है वो भी चैतन्य आत्मा में ही बाद बोध होता है ना। अब कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, ये समग्र जगत दर्पण में जैसा दिखता है, आपकी बालकनी में आपने दर्पण लगा दिया तो दर्पण क्या करता है, करता नहीं होता है, उसमें बाहर की चहल पहल, बाहर के सूर्य चंद्रमा, बाहर के पहाड़ नदी, बाहर के जीव जंतु पशु पक्षी, बाहर का पानी, सब कहां दिखता है, वो दर्पण में दिखता है तुल्यम, ऐसे ही। अब आप देखिए दृष्टांत में कितना ग्रहण करना है कि जो दर्पण का जो सपाटी है, जिसको कहते हैं दर्पण सरफेस जो है, उस दर्पण के अंदर ये नगरी गई है क्या, सूर्य चंद्रमा अंदर गए हैं क्या, देश काल अंदर गए हैं क्या, ना। और दिखने के कारण दर्पण में कोई विकार आ गया, सूर्य देखने से दर्पण दूसरा हो गया, पानी दिखने से बिक गया, और बाहर धूल दिखने से वो गंदा हो गया, नहीं, स्वच्छ, वो स्वच्छ ही है, अंदर दिखता है पर अंदर है नहीं, कोई पोल नहीं है कि अंदर सब प्रविष्ट हो गया, और जैसा बाहर है ऐसा ही भीतर दिखता है, फिर भी दर्पण कोई सी प्रकार का अपने में परिवर्तन किए बिना वो सबको प्रतीत कराता है। दृष्टांत इतना ही है, दर्पण से वो नगरी अभिन्न है कि भिन्न है, दर्पण से नगरी अभिन्न है कि नहीं, क्या दर्पण और नगरी दो दिखता है उस समय, दर्पण में अगर आप यही लिखिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब और दर्पण दो चीज है कि प्रतिबिंब दर्पण के साथ एक है, एक है, फिर भी दर्पण में प्रतिबिंब है न होने पर भी जैसे दर्पण से एक है ऐसा लगता है, मालूम पड़ गया, और मेरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखने से दर्पण में कोई विकार हुआ मुझे प्रतीति कराने के लिए, वो ज्यों का त्यों रहा और मुझे परावर्तित कर रहा है। तुल्यम निजांतर्गतम, इसी प्रकार से देखो दृष्टांत दृष्टांत लीजिए, ये समग्र विश्व हर हमेश हमारे अंदर प्रतीत होता रहता है, ये जगत बाहर दिखता है पर मालूम कहां पड़ता है, किसके अंदर, चैतन्य आत्मा में ही मालूम पड़ता है, चैतन्य आत्मा में मालूम पड़ने पर भी उससे अभिन्न होने पर भी चैतन्य आत्मा में कोई विकृति आती है, कोई फेरफार होता है, कोई परिवर्तन होता है, वो तो ज्यों का त्यों रहकर पूरे के पूरे दृश्य को वहां दिखा देता है। अब आप देखिए दिखने पर भी अंदर नहीं है, अंदर नहीं होने पर भी अंदर है ऐसा दिख रहा है। अभी आपको इतना ही समझना है, प्रतिबिंब और दर्पण का संबंध क्या है। प्रतिबिंब दर्पण से अभिन्न है, दर्पण प्रतिबिंब है कि नहीं है। गुजराती में कहावत थी, वो मगर ने कहा मैं अपना कलेजा बाहर छोड़ के आया है। ऐसे हम लोग भी कह सकते हैं हमारी बुद्धि कहां छोड़ के आए हैं। राज्य खाली है, सब अभी खाली है। वेद याद रखना प्रेमपुरी वालों, आप लोग को मैं बिल्कुल शर्म के बिना कह सकता हूं, ये स्थान वेदांत चिंतन के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन क्या था, प्रेमपुरी महाराज कोई वेदांत में भी गड़बड़ बोले तो फट करके कह दे अरे उठो जाओ पढ़ के आओ तब वेदांत की चर्चा करना। इतना कड़क प्रेमपुरी जी का महाराज का नियम था, वेदांत को छोड़कर और कोई चर्चा होती नहीं थी। महाराज श्री ने भी वही चलाया और मैं उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने वेदांत का ही ग्रंथ लिया है। यही मेरी पूजा है प्रेमपुरी महाराज की और महाराज श्री के, उनको ने जो नियम बनाया उसमें समझदारी है। वेदांत की चर्चा, ऑल दिस वेदांत। इसलिए मैं फिर से चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सुबह सुबह शास्त्र विचार करें, थोड़ी अक्कल लगानी पड़ती है। बहुत ज्यादा लगाते तो थोड़ी नींद भी आ जाती है, पर लगानी पड़ती है ना। आइए, दर्पण और दर्पण में प्रतिबिंबित जो भी है, पशु पक्षी गाय भैंस पर्वत तालाब आकाश में बादल पक्षी सब कुछ दिखता है, वो जो दिख रहा है वो दर्पण से इस समय अभिन्न है कि नहीं। पर दर्पण उसे क्या है, जरा दर्पण को घुमा दीजिए तो क्या है, स्वच्छ कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ अंदर दिखने पर भी वो अंदर गया नहीं है, वो प्रतिबिंबित करते हुए भी उसमें कोई विकार हुआ नहीं है। अच्छा, बाहर जो हाथी खड़ा है वो जिंदा है और दर्पण में जो हाथी दिखता है वो जिंदा है कि मरा हुआ है, जिंदा है, तो दो हाथी हो गए ना। आप लोग क्या हमको बनना है, कितने हो गए हाथी, एक ही हो गया, दो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाथरूम में जाके आप बाहर आएंगे तो कहेंगे दो कप काल चाय बनाना, पत्नी कहेगी प्रेमपुरी में जाना बंद करो। दिखते हैं दो फिर भी है क्या, एक, एक होने पर भी दो दिख रहे। इसमें दर्पण में कुछ नहीं हुआ है, दर्पण ज्यो का त्यों निश्छिद्र, कोई छिद्र नहीं है, कोई होल नहीं है जिसके द्वारा हाथी अंदर घुस गया, नहीं। दर्पण की आप छुए तो सपाटी क्या है, ज्यों की त्यों इसमें स्वच्छ है और निरिंद्र है, असंग है। पानी अंदर दिखने से दर्पण भीग जाता है, ऐसा होता है। अगर आपको सर्दी हो गई है दर्पण में देखेंगे तो दर्पण को क्या भी हो जाएगा, नहीं। आपने तेल लगाया तो दर्पण भी क्या हो गया, चिकना हो जाएगा, ऐसा होता है। दर्पण को कुछ नहीं होता है, स्वच्छ असंगे सूक्ष्म निर्विकारे प्रतिबिंबतया सती दृश्यमान अवलोक्यमाना, बस इतना एक संपर्क है। विश्वम निजांतर्गतम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, अभी एक बात है महाराज जी, आप जरा बताइए महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारे अंदर ये जगत दिखता है, चैतन्य आत्मा में ही जगत की प्रतीति होती है, पर हमको तो लगता है ये बाहर प्रतीत होता है। हमको जगत भीतर दिखता है कि बाहर दिखता है? मैं आपको बाहर दिखता हूं कि आपके भीतर दिखता हूं? और वो है भी बाहर है, चलते फिरते स्वामी जी बाहर बैठे हैं और सुबह हमारी खोपड़ी चाट जाते हैं तो है बैठे, बिल्कुल बैठे, तो बाहर है सचमुच में है। तो आप कैसे कहते निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया? तो यहां कहते हैं कि आपकी माया देखो, आत्मनि स्वप्रकाशे प्रतीति विषय आश्रय माया, माया मानी क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण एक चीज है, मैं आपको प्रश्न करता जाऊं, आप कहेंगे मालूम नहीं है। आप घोड़े को जानते हैं? हाँ महाराज। मछली को जानते हैं? स्वामी जी मैं बंगाली हूं, आप मेरे नजदीक नहीं बैठ सकते हैं, बंगाली हूं। तो मछली को जानता हूं, हाँ जानते हैं, इस सब चीज को मैं जानता हूं, मछली को जानता हूं, घोड़े को जानता हूं, टेबल को जानता हूं, हैंगिंग गार्डन को जानता हूं। यहां कोई हैंगिंग नहीं है, ऐसे ही गार्डन है, हैंगिंग गार्डन नाम गलत है, कौन सा गार्डन हैंगिंग है वहां? यू हैंग आउट इन हैंगिंग गार्डन, बट देयर इज नो हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन को जानता हूं, हां। सुगर जानता हूं, मीठा चीनी, नमक को जानता हूं, चैतन्य ब्रह्म पूर्ण क्या जानता हूं कि नहीं जानता हूं? नहीं जानता हूं। ब्लैक होल नहीं जानता हूं। ये तुलसी में ऐसी गंध है कि नहीं है? ये गंध क्यों है जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन से केमिकल के कारण ऐसी गंध है? नहीं जानता हूं। तुलसी का नाम तुलसी क्यों है? इसका क्या क्या औषधि उपयोग है? नहीं मालूम है। दो चार प्रश्न करता जाओ तो आप कहेंगे आई डोंट नो। आपने अज्ञान बनाया कि है? एक चीज जन्म से लेके आए, वो क्या है?
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad, presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: एक ही एक साल में एक ही बार वो स्वामी जी आते हैं, तो गत साल वो नीम के पत्ते खिलाए थे गत साल, और ये साल में एक साल के बाद भी वो याद है। एक साल तक रहा वो नीम के पत्ते। कहने का तात्पर्य क्या है भाई? संस्कार, जीवा का संस्कार रहता है, ऐसे श्रवण का संस्कार रहा, ये सब जो संस्कार है, स्पर्श हुआ संस्कार रहा, रह गया, ये छुटता नहीं है। तो ये सब ये आपको क्यों बताना पड़ता है भाई? कि स्वप्न अवस्था में आप प्रूफ दे, प्रूफ चाहिए कि स्वप्न अवस्था में वो कहाँ से आता है, हाउ इट इज पॉसिबल। सो जाते हैं, कोई संपर्क नहीं होता स्थूल पदार्थ से, कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता, कर्म दिख, जागृत में तो कर्म दिख रहे हैं, इतना ही नहीं, जागृत में हम वीडियो ट्रेप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कर्म हो रहा है। स्वप्न में ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, तो स्वप्न में भोग होता है ऐसा आप कह कैसे सकते हैं? इस प्रकार कह सकते हैं, हाँ, ये जो सूक्ष्म संस्कार इम्प्रिंट हो गए वो ही संस्कार काफी है, वो परमात्मा को वो संस्कार काफी है फिर से अपनी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए। स्वप्न में जब वो परमात्मा सो जाते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी ही सुंदर इसके बारे में बात की है। उपनिषद के ही शब्द में हम देखेंगे, अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामम अपादाय। अस्य लोकस्य सर्वावतो, ये जो जागृत का जो लोक है उसमें से मात्रम अपादाय, उसमें से संस्कार रूप मात्रा को ले लेते हैं। ये संस्कार इम्प्रिंट हो गए ना, अब कौन से संस्कार की मैं बात कर रही हूँ आपको बराबर वो नीम का पत्ता याद कर लेना। तो संस्कार मेरे पास है। अब क्या होता है जब हम सो जाते हैं तो हमारे भीतर ये जो संस्कार है, संस्कार तो पड़े हैं, देखिए संस्कार जड़ है। जड़ कैसे है वो हम आपको बताते हैं। एक साल तक वो नीम का पत्ता कड़वा खा लिया, एक साल तक कुछ नहीं हुआ, एक साल तक वो नीम के पत्ते ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो जब इंद्रियों से उसका सन्निकर्ष हुआ, जब वो सामने दूसरी बार आया तब क्या हुआ, तब वो संस्कार फिर से जाग उठे। तो भाई अंदर ऐसा कौन है जिसने वो एक साल पहले का स्वाद जो है वो आपको याद दिलाया, वो आप बताइए मुझे। इतना बता देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, इतना ही सोचना है। ये स्वप्न अवस्था, जैसे कहा ना वो मेहमान की बात याद रखी ना, तो 19 में से एक आदमी ने भी पूछा नहीं भाई कैसे है। ऐसे स्वप्न अवस्था में आप सोचिए कि एक साल के पहले हुआ स्वाद, ये स्वामी जी नीम के पत्ते लेके बैठे हैं, तो मुख बिगाड़ने वाला भीतर कौन है, किसने याद दिलाया, आपने कौन से कर्म किए कि ये संस्कार याद आ गए, किया क्या, अंदर हुआ क्या, अंदर क्या केमिस्ट्री बनी। तो एक साल तक ऐसे के ऐसे वो कोल्ड स्टोरेज के जैसे ये संस्कार स्टोर किसी ने किए हैं। मन तो जड़ है, संस्कार भी जड़ है, जड़ वस्तुओं के संस्कार जड़ ही होंगे ना, चेतन नहीं हो सकते हैं। और ज्ञान विज्ञप्ति जो है वो चेतन में ही हो सकती है, याद कराना चेतन का ही काम है, तो कोई भीतर चेतन पड़ा है, इतना ही सोचना है। यहां तक ही हम ले जाते हैं आपको, उपनिषद का यही काम है कि आपको याद कराते हैं कि सोचिए वो याद कराने वाला कोई है, किसी ने संभाल के स्टोर करके रखा है, और अब ये याद तत्क्षण यथा क्षण आ गया। आप नहीं इच्छा करेंगे तो भी मुख कड़वा हो जाता है दृष्टिपात से मात्र। तो ये संस्कार किसने संभाल के रखे, किसने निकाले, वो अंतप्रज्ञ है, वो तेजस है, वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा क्या करते हैं, मात्राम अपादाय स्वेन निहत्य, खुद ही वो मात्रा लेके खुद भी वहां तोड़ फोड़ करता है, ऐसा लिखा है उपनिषद में। स्वेन विहत्य, स्वेन निर्माय, स्वेन भाषा, स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपीति, अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, परे देवे एकी भवति, यत्र स्वेन महिमानं अनुभवति इति। वो अपने महिमा जो है उसका, उसमें वो प्रतिष्ठित है। उसको ये संस्कार को जगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी इच्छा भी नहीं करनी पड़ती है, वो अपने ही महिमा में स्थित रह के ये सब करता है, सब तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, याने ये संस्कार तो पड़े हुए हैं, ठीक से सुनिए जागृत के। अब स्वप्न में जब वासना चलती है, स्वप्न में यहाँ जाने की, पीछे तो वासना चलती ही रहती है और हम सो गए हैं, ऐसा होता है। स्वप्न अवस्था कोई अलग अवस्था नहीं है, हम सो गए हैं। अब सोते हुए परमात्मा इतने कृपालु है, सोते हुए ये जीवात्मा के जो पाप पुण्य के संस्कार जो कर्म है वो सोते हुए हम आराम से भुगत सके ना, इसलिए परमात्मा भांग फोड़ करते हैं, तोड़ते हैं ये संस्कार को, और स्वप्न अवस्था में जैसे भुगता जाए ऐसे उसको जोड़ देते हैं। इसीलिए स्वप्न में हम जागृत में जो देखते हैं, स्वप्न में थोड़े संस्कार अलग होते हैं, जागृत में जो कर सकते हैं, स्वप्न में जो कर सकते हैं वो जागृत में नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि परमात्मा को वहां फ्रीडम मिल जाती है, वहां शरीर की मर्यादाएं नहीं आती, शरीर की मर्यादा क्या है कि अगर 1000 फुट से जंप लगा दिया तो मर ही जाएगा। कुछ तो होगा ही, मर नहीं जाएगा तो पैर तो टूटेगा ही। पर यही जंप सपनों में लगाया तो 1,00,000 फीट से लगाया तो भी वो फिर से वो दूसरा कुछ स्वप्न देखने लगेगा, मर्यादा में से निकल गया। ठीक है, तो परमात्मा बहुत ही करुणा कर लेते हैं। वो 1,000 बार 1,000,000 फीट से 10 बार गिरना जागृत अवस्था में लिखा हुआ है तो 1,00,000 फीट से गिरा देता है और हम डर के चले जाग जाते हैं कि अरे भाई आप तो ऐसा सपना देख लिया, आपको नहीं मारने की व्यवस्था है सपना। जागृत में 1,000 फीट में भी मर जाते थे तो यहाँ उसने ये कर दिया। उसके लिए उसको विहत्य, उसके लिए उसको कुछ कारीगरी करनी पड़ती है। स्वेन ज्योतिषा, ये किसके प्रकाश में ये सब परमात्मा करता है? तो बोले कि यहाँ वो परमात्मा अपनी ही ज्योति से ये सब कुछ करता है। स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति, ये कोई ऐसी नींद नहीं है, कोई साधारण नींद नहीं है। प्रकर्षेण, हालांकि ये नहीं है तो भी दिख रहा है, वैसी प्रस्वपिति वो सो जाता है। और स्वप्न अवस्था में देखिए, स्वप्न अवस्था जो है उसके जो संस्कार है वो जागने से वो सब कुछ निकल जाते हैं, चले जाते हैं। स्वप्न में कोई भी आपने अपनी प्रिय चीज को प्रिय व्यक्ति के पास बैठे उठे उससे राग भी नहीं होगा, और अप्रिय व्यक्ति के साथ बैठे तो स्वप्न में द्वेष भी, स्वप्न के पात्र के साथ द्वेष भी नहीं होता है, स्वप्न के पात्र के साथ राग भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जागृत में ऐसा होता है, क्योंकि जागृत में जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु आती है तो उससे सिर्फ संपर्क करके उसमें से आनंद लेके हम रुक नहीं जाते। जब तक संपर्क होता है, ये फ्लावर से संपर्क हो गया, स्पर्श किया, स्पर्श का आनंद हो गया, यहां तक परमात्मा है। ठीक है, अब ये मेरा कब हो जाए तो वो छूट गया। कि जागृत में ऐसी गलती हो जाती है, ये मुझे फिर कब मिल जाए तो वो छूट गया, यहां तक तो वो है, ये दिखा ना अच्छा लग गया ना, यहां तक वो है, और इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। पर स्वप्न में ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? स्वप्न में हमारी दखल नहीं होती है। ठीक है, स्वप्न में हमारी दखल नहीं होती है क्योंकि दखल करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही है। सुन लीजिए, जो दखल करता है ना वो इंस्ट्रूमेंट एक ही है, वो मन है। मन राग और द्वेष कर रहा है। अब दखल करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट मन है ना, वो मन स्वप्न में सूक्ष्म जो संस्कार है वो लेके बैठा है, तो वो दो काम नहीं कर सकता। वो दखल करेगा या दिखाएगा। स्वप्न में उसका काम क्या है? स्वप्न में संस्कार को दे देना, सप्लाई करना काम है। जैसे आप घर में रसोई बनाते हैं, घर में रसोई बनाते हैं तो आप ही सब कुछ उसमें ऑल्टरेशन करते हैं और आपका जो स्वभाव है वो रसोई में चला जाता है। सबके हाथ की रसोई अलग अलग बनती है। अब कोई बड़ा शेफ आ गया, बड़ी अच्छी रसोई बनाने वाला कोई घर में आपने बुलाया, कोई प्रसंग है, तो घर में 3-4 लेडीज है। वो 3-4 लेडीज जब वो बड़ा रसोईया के साथ काम करती है तो वो जो लेडी जो है जो अब तक बना रही थी उसका अब कुछ नहीं चलता। वो क्या करता है, वो बड़ा शेफ बोलता है मिर्ची लाओ, तो मिर्ची दे दी। अब वो लेडी ने क्या किया, मिर्ची दे दी। अब माप उसका नहीं चलेगा, उसका काम क्या है, मिर्ची देना उसका काम है। तो दूसरे को बोलेगा चलो भाई हल्दी दे दो, ये सब्जी दे दो, ये लोट दे दो, ये आटा दे दो। तो ऐसे अब क्या हो गया, अब यहाँ स्वयं ज्योति बन गया वो परमात्मा। अब उसके हाथ में सब कंट्रोल आ गया, तो जो मन कर्म कर रहा था जागृत में, स्वैर विहार कर रहा था, अब उसका काम बंद हो गया। अब उसको क्या करना है, सिर्फ उसको संस्कार ही सप्लाई करने हैं। हाँ, तो अब वो अपने संस्कार को डाल नहीं सकता। अब स्वप्न में जो भी है वो उसका ही चलेगा, वो परमात्मा का ही चलेगा। और परमात्मा का ही चलता है तो कर्म आप भुगत लेते हैं, सुखी दुखी होते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बंधन नहीं होता है। तो स्वप्न में जो भोग होता है, समझ में आता है बराबर? तो स्वप्न में जो भोग आता है आप खींचते नहीं चले जाते, स्वप्न के भोग की अपेक्षा भी नहीं होती, आप उसको याद भी नहीं करते कि ये मुझे फिर से मिल जाए। जागृत अवस्था में ऐसा होता है। तो हमको स्वप्न अवस्था के जरिए क्या सीखना है, स्वप्न अवस्था के जरिए इतना ही सीखना है कि हाँ भाई बात तो बराबर है, स्वप्न में भोग होता है पर नॉन अटैचमेंट होता है, ऐसा जागृत में हो सकता है क्या? हाँ भाई जागृत में हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर ढूंढ लीजिए कि क्या ऐसा है जिसके जरिए मैं अटैच नहीं होती हूँ स्वप्न में, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग मैंने निकाल दी है, हाँ मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरा आग्रह, मेरा दुराग्रह मैंने निकाल दिया है, मेरे सब संस्कार मैंने बाजू पर रख दिए हैं, मैं प्रार्थना भी नहीं करती हूँ ऐसा करो ऐसा करो, मैं गिड़गिड़ाती भी नहीं हूँ, मैं शुक्रिया अदा भी नहीं करती हूँ, हाँ अभिवादन, हाँ केन कम अभिवदे, केन कम जिग्रे, केन कम विजानिया। स्वप्न में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर जागृत में ऐसा हुए तो मैं नहीं अटैच हो पाऊंगी, बस इतना ही समझना है कि यही जागृत में आप करने लगे, जब भी संस्कार निकलते हैं और कर्म चलता जाता है उसमें अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग निकाल दीजिए, आप हट जाइए, पूरे हट जाइए, तो स्वप्न के बाद जितने आप फ्रेश नॉन अटैच कर्म करके भोग करके जितने नॉन अटैच आप रहते हैं जागृत अवस्था में, इतने ही नॉन अटैच आप रह सकेंगे। ये जब अपना अवस्था जानने का फायदा, नहीं तो क्या है जिस स्वप्न अवस्था वो जान के कुछ नहीं हो सकेगा। हाँ और फिर यहाँ भी यही परमात्मा यही अंगों से, यानी स्वप्न में जो जो मैंने, स्वप्न में क्या है, स्वप्न में साक्षी भाव ज्यादा आ सकता है, स्वप्न में आप जागृत तो है ही, स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं, हमने क्या सुबह उठ के कहते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा था, मैं स्वप्न भुगत रहा था, ऐसा किसने बोला है? कोई एक व्यक्ति दिखाइए जिसने ऐसा कहा कि मैंने स्वप्न का भोग किया। जागृत में कहते हैं मैंने भोग किया, स्वप्न में क्या कहते हैं? इस स्वप्न में मैंने देखा, बस जागृत भी देखते जाइए। हाँ मैं चला मैंने देखा, मैं खाना खाया मैंने देखा, मैंने सुना मैंने देखा, मैं आनंदित हुआ मैंने देखा, मैं इसे मिला मैंने देखा, मैं इसे बिछड़ गया मैंने देखा, मेरा किसी ने मान किया मैंने देखा, मेरा किसी ने अपमान किया मैंने देखा, बात बात खत्म हो गई। इस जागृत अवस्था को ऐसे कर दीजिए तो देखने से साक्षी भाव होने से कभी दुख नहीं होगा। तो ऐसी ये स्वप्न अवस्था है, ये स्वप्न अवस्था में मन में सब इंद्रिया परे देवे मनस्य एकी भवती, क्या होता क्या है, परम देव जो है, परम देव रूप मन में एक रूप, ये सब इंद्रिया जो है अपने संस्कार से एक रूप हो जाती है, ऐसी ये स्वप्न अवस्था है। अब तीसरी अवस्था है उसके बारे में विचार करना है, मंत्र 5 यज्ञ।

जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कंचन कामम कामयते। अब तीसरी अवस्था है, जागृत में 19 मुख से वो परमात्मा नहीं मिला तो स्वप्न में वही परमात्मा का थोड़ा और ज्यादा गहन अनुभव होता है साक्षी रूप से, पर साक्षी में भी दो वृत्तियां तो बनी ही रहती है कि मैं इस स्वप्न अवस्था का साक्षी हूं, तो वहां भी द्वैत बना रहता है, ये कोई साक्ष्य विषय है और मैं उसका साक्षी। अब परमात्मा को जानने की जो अवस्था हमारी होनी चाहिए, जब हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, हमारा अपना स्वरूप इसी जीवन में इसी शरीर मन बुद्धि के संगात में कब हम प्राप्त कर सकेंगे, तब अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो बोले ये स्वप्न की अवस्था जैसी होनी चाहिए कि साक्षी रूप पर वहां द्वैत बना रहता है। तो ये अवस्था को और कॉन्सेंट्रेटेड और गहनता में अब समझाई जाती है सुषुप्ति के जरिए कि भाई वो परमात्मा का सघन अनुभव करना है। हाँ करना है, क्यों करना है, अगर स्वप्न में बिना अटैचमेंट रह सकते हैं ऐसा जागृत में भी हमें रहना है। क्यों, क्योंकि हमारे जीवन का इतने साल का निष्कर्ष हम यही ले सके हैं कि संपर्क से सन्निकर्ष से या सुख होता है या दुख होता है, हम अब थक गए हैं। इट इज टू मच, नाउ वी आर टायर्ड। ये क्या, कभी राग कभी द्वेष, इसमें से हम निकल कैसे सकेंगे, तो साक्षी भाव से। अच्छा साक्षी भाव में भी सतत नहीं रह सकते, साक्षी भाव भी आता है चला जाता है। तीन गुण जो है वो वर्तन होते हैं, अनुवर्तन, सत्व रजस और तमस साक्षी भाव में भी आते हैं। कोई और रास्ता है कि वही रुक जाए, तो बोले ये सुषुप्ति अवस्था जो परमात्मा की है उसे समझ लेंगे तो वो रास्ता भी खुल जाएगा। यानी स्वप्न में जो हो रहा है उससे हम टैली हो गए कि भाई साक्षी हो गए और नॉन अटैचमेंट है उसमें, क्योंकि हम अपनी उसमें कुछ नहीं लगाते बुद्धि, हम अपनी कुछ अपना कुछ कर्म उसमें ऐड नहीं करते। ऐसे ही अगर सुषुप्ति में जो हो रहा है वैसा आप करने लगेंगे, परमात्मा के और करीब आप पहुंच सकते हैं। इसीलिए ये सुषुप्ति की अवस्था जाननी है, कोई और प्रयोजन नहीं है, पहले प्रयोजन समझ लीजिए। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या कहा है वो आपको जागृत में करना है। वो बात जो मैंने की थी आपको दो दिन पहले वो फिर से याद दिला दे कि वो शिष्य ने पूछा कि भाई आत्म साक्षात्कार यानी गुरु आपको हो क्या रहा है, तो बोले हो क्या रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता, पर जब तेरी जागृत अवस्था सुषुप्ति के जैसी हो जाएगी, सुषुप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं कहा, नहीं तो वो तो इजी है, एक टेबलेट खाली एल्प्रेजोलाम की टेबलेट खाली और काम हो गया। सुषुप्ति जैसी हो जाती है तब समझना आत्म साक्षात्कार हो गया, तो अब वहां आके हम खड़े हो गए हैं। तो भाई हम सुषुप्ति जैसी जागृत अवस्था करना चाहते हैं, हम थक गए हैं ये राग द्वेष से, तो क्या करना है, यहाँ जो लिखा है अक्षरतः ऐसा किया तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। भाई कैसे होगा, तो यहाँ किया है, आज सिर्फ हम भाषांतर ही देखेंगे। यत्र सुप्तो, यहाँ इस अवस्था में सोया हुआ, देखिए सोया हुआ शब्द ही निष्क्रियता बता देता है। कोई सोया हुआ आदमी दौड़ सकेगा, सोया हुआ यानी क्या भाई, निष्क्रिय पड़ा हुआ, यानी यहाँ जागृत अवस्था में निष्क्रिय होना बताया है। तो निष्क्रिय यानी कि आलसी हो जाना है, काम सब बंद कर देना है, नहीं आलसी नहीं होना है। निष्क्रियता किस लेवल पे चाहिए, तो यहाँ आगे किया है कि निष्क्रिय सोया हुआ, कैसे सोया हुआ, तो बोले न कंचन कामम कामयते, कोई भी भोग की इच्छा नहीं करता है, बस इतना ही करना है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, कोई भी भोग की इच्छा नहीं करता है। न कंचन कामम कामयते, ये तो सुषुप्ति का वर्णन है, करना नहीं करना अभी तो हमारे ऊपर की बात है, ये तो सिर्फ जान लेते हैं कि होता क्या है सुषुप्ति में। न कंचन स्वप्नम पश्यति, कोई स्वप्न भी वो नहीं देखता है। कोई स्वप्न नहीं देखता है यानी क्या, कि भाई आपने कहा कि भाई काम नहीं करना है, निष्क्रियता है, हम कोई काम नहीं करेंगे, गुफा में जाके बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, पर मन से विषय में जा सकते हैं,
मन आंख बंद कर ली और रूप के जो संस्कार हो गए ना मन में, वो रूप में गया मन। एक साल पहले का वो कड़वा नीम याद रह सकता है तो सबको सब अच्छा भी याद रह सकता है। तो जो अच्छा अच्छा रूप है जहाँ से आनंद थोड़ा थोड़ा मिला था, देखिए ऐसा क्यों होता है, हम शेख चिल्ली के विचार में क्यों पहुंच जाते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है। हमारी भीतर की जो सर्च है ना, भीतर की जो इच्छा है ना, वो आनंद की ही है। पर वो आनंद हकीकत में क्या है वो पता नहीं है, इसीलिए ये हमारा अज्ञानी मन विषय के आनंद के संस्कार को याद करके भी अंत में तो वो आनंद ही प्राप्त करता है। गलती क्या हो जाती है कि विषय के संस्कार से वो आनंद प्राप्त कर लेता है, इसलिए क्षणिक क्षणिक होता है। गलती इतनी है, विचार करना गलत नहीं है, पर यहाँ क्या कहा है कि यहाँ स्वप्न नहीं देखता, यानी आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठ के गुफा में बैठ के मन के भोग को याद नहीं करता, संस्कारों को याद नहीं करता है, स्वप्न नहीं देखता है, यानी लिटरल स्वप्न नहीं, सूक्ष्म आंख के भोग को याद नहीं करता है, श्रवण के भोग को याद नहीं करता है। इतना ही नहीं, ऐसा श्रवण मेरे कान में हो ऐसी इच्छा भी नहीं करता है। हमारा एक साथ दो कर्म होता है, रूप तो याद करते ही है, पर ये रूप अब ऐसा होना चाहिए ऐसा भी मन में डिजाइन बना लेते हैं, स्वप्न के ऊपर और स्वप्न डाल देते हैं और इच्छा तैयार कर देते हैं। स्वाद को याद करता है, स्पर्श को याद करता है, स्वप्न नहीं देखता, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, परमात्मा का नाम लेने बैठते हैं, तब कोई भी प्रकार के आपके अनुभव, जितना भी आपका अनुभव है, वो अनुभव याद नहीं आता है। इतना ही बताना है, परमात्मा जो है कोई भी इंद्रिय के अनुभव से नहीं मिलता, अर्थात कोई भी इंद्रिय का अनुभव अब तक आपने प्राप्त किया है वो परमात्मा वहां से प्राप्त नहीं होगा। बराबर सुन लीजिए, परमात्मा इंद्रिय के कोई भी अनुभव से प्राप्त नहीं होगा। ये दृश्य, ये मूर्ति देख ली और परमात्मा मिल गया तो वो नहीं होगा। उसका आनंद कोई वस्तु को देखने का आनंद और मूर्ति को देखने का आनंद एक ही है। ये यहाँ ये स्टैंड पॉइंट से जब बात की जाती है तब हम कहते हैं कि ये जो मूर्ति जो है दृश्य है, वो सिर्फ मात्र दृश्य से, सिर्फ मात्र साकार से वो परमात्मा नहीं मिल सकते। वो ये जब बात करते हैं तब हम वो कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है हुआ कि मूर्ति पूजा के विरोध है, मूर्ति में मानने वाले नहीं है, ये वेदांती ये है वो है, ऐसा मन का रिएक्शन कभी मत करना। स्वप्न नहीं देखता यानी क्या कि स्वप्न देखने के लिए मटेरियल क्या चाहिए, मन के ऊपर संस्कार चाहिए। मन के ऊपर संस्कार कैसे होते हैं, इंद्रिय करण से ही मन के ऊपर संस्कार होते हैं, इसीलिए कहा कि अगोचरम, वो परमात्मा अगोचरम है, इसलिए कहा स्वप्न नहीं देखता। अगर आपको जागृत अवस्था में वो परमात्मा का अनुभव करना है तो आपको कोई हक नहीं बनता आपका कि मन से एक भी विषय का आप विचार करो, एक भी इच्छा नहीं, एक भी वासना का चिंतन न करना, ऐसा ही यहाँ कहा गया है। आगे कहते हैं, उसे सुषुप्ति कहते हैं, वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमयी, आनंद का भोक्ता, चेतना मुख वाला जो है वो प्राज्ञ है, वो तृतीय पाद है। इतना कर लिया तो वो अंदर जो भीतर आनंद भूखे है, आनंद होने वाला प्राप्त करने वाला भीतर ही बैठा है, वो आपको यही इसी क्षण बैठे हुए प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा हम सबको प्राप्त हो जाए ऐसी गुरुजनों को प्रार्थना। इसके ऊपर विचार कल करेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवस्तोत्रम, प्रेजेंटेड बाय वेदमंत्रम.com टीम। ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

कालाय नमः, ॐ कृत्तिवाससे नमः, ॐ सुभगाय नमः, ॐ प्रणवात्मकाय नमः, ॐ उन्नद्राय नमः, ॐ पुरुष

नमः, ओम उग्राय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम तार्क्ष्याय नमः, ओम प्रियभक्ताय नमः, ओम परंतपाय नमः, ओम दात्रे नमः, ओम दयाकराय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम कामशासनाय नमः, ओम श्मशाननिलयाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम श्मशानस्थाय

ॐ अमृतपाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ महाद्युतये नमः ॐ तेजोमयाय नमः ॐ अमृतमयाय नमः ॐ अन्नमयाय नमः ॐ

नमः। ॐ वसुमनसे नमः। ॐ सत्याय नमः। ॐ सर्वपापहराय हराय नमः। ॐ सुकीर्तये नमः। ॐ शोभनाय नमः। ॐ स्रग्विने नमः।

नमः। ॐ अमृताय शाश्वताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ बाणहस्ताय प्रतापवते नमः। ॐ कमण्डलुधराय नमः। ॐ धन्विने नमः। ॐ अवाङ्मनसगोचराय नमः। ॐ अतीन्द्रियाय महामायाय नमः। ॐ सर्वावासाय नमः। ॐ चतुष्पथाय नमः।

वीर्याय नमः ओम भूतचारिणे नमः ओम पुरंदराय नमः ओम निशाचराय नमः ओम प्रेतचारिणे नमः ओम महाशक्तये महाद्युतये नमः ओम अनिर्देश्य वपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम सर्वाचार्याय मनोगतये नमः ओम बहुश्रुताय नमः ओम महामायाय नमः ओम नियतात्मने ध्रुवाय नमः ओम अध्रुवाय नमः ओम तेजस्तेजसे नमः ओम द्युतिधराय नमः ओम जनकाय नमः ओम सर्वशासकाय नमः ओम नित्यप्रियाय नित्यनृत्याय नमः ओम प्रकाशात्मने प्रकाशकाय नमः।

नमः ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ॐ प्रमाणज्ञाय नमः ॐ हिरण्यकवचाय नमः ॐ हरये नमः ॐ विमोचनाय नमः।

नमः ॐ कर्त्रे नमः ॐ सर्वबन्धविमोचनाय नमः ॐ व्यवसायाय नमः ॐ व्यवस्थानाय नमः ॐ स्थानदाय नमः ॐ जगदादिजाय नमः ॐ गुरुदाय नमः ॐ ललिताय नमः ॐ भेदाय नमः ॐ भावात्मने आत्मनि संस्थिताय नमः ॐ वीरेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ वीरासनविधये नमः।

परमायाय नमः ॐ शंभराय नमः ॐ व्याघ्रलोचनाय नमः ॐ रुचये नमः ॐ बहुरुचये नमः ॐ वैद्याय नमः ॐ वाचस्पतये नमः ॐ

सूर्याय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ रविलोचनाय नमः, ॐ विश्वोत्तमाय नमः, ॐ वीतभयाय नमः, ॐ विश्वभर्त्रे नमः, ॐ निवारिताय नमः, ॐ नित्याय नमः, ॐ नियतकल्याणाय नमः, ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः, ॐ दूरश्रवाय नमः, ॐ विश्वसहाय नमः, ॐ ध्येयाय नमः, ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः, ॐ उत्तारणाय नमः, ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः, ॐ विज्ञेयाय नमः, ॐ दुःसहाय नमः, ॐ धवाय नमः, ॐ अनादये नमः, ॐ भूर्भुवो लक्ष्म्यै नमः, ॐ किरीटिने नमः, ॐ त्रिदशाधि

ॐ विष्णुविभूषणाय नमः। ॐ ऋषये नमः। ॐ ब्राह्मणाय नमः। ॐ ऐश्वर्याय नमः। ॐ जन्ममृत्युजरादिकाय नमः। ॐ पञ्चयज्ञसमुत्पत्तये नमः। ॐ विश्वेशाय नमः। ॐ विमलोदयाय नमः। ॐ अनाद्यन्ताय नमः। ॐ आत्मयोनये नमः। ॐ वत्सलाय नमः। ॐ भूतलोकदृशे नमः। ॐ गायत्रीवल्लभाय नमः। ॐ प्रांशवे नमः। ॐ विश्वावासाय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ शिशवे नमः। ॐ गिरिरथाय नमः। ॐ सम्राजे नमः। ॐ सुषेणाय सुरशत्रुघ्ने नमः। ॐ अनेमये नमः। ॐ इष्टनेमये नमः। ॐ मुकुन्दाय नमः। ॐ विगतज्वराय नमः। ॐ स्वयं ज्योतिषे नमः। ॐ महाज्योतिषे नमः। ॐ तनुज्योतिषे नमः। ॐ अचञ्चलाय नमः। ॐ पिङ्गलाय नमः। ॐ कपिलश्मश्रवे नमः। ॐ भालनेत्राय नमः। ॐ त्रयीतणवे नमः। ॐ ज्ञानस्कन्दाय नमः। ॐ महानीतये नमः। ॐ विश्वोत्पत्तये नमः। ॐमुपप्लवाय नमः। ॐ भगाय नमः। ॐ विवस्वते नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ गतपाराय नमः। ॐ बृहस्पतये नमः। ॐ कल्याणगुणनाम्ने नमः। ॐ पापघ्ने नमः। ॐ पुण्यदर्शनाय नमः। ॐ उदारकीर्तये नमः। ॐ उद्योगिने नमः। ॐ सद्योगिने नमः। ॐ सदसत्रपाय नमः। ॐ नक्षत्रमालिने नमः। ॐ नाकेशाय नमः। ॐ स्वाधिष्ठानषडाश्रयाय नमः। ॐ पवित्राय पापनाशाय नमः। ॐ मणिपूराय नमः। ॐ नभोगतये नमः। ॐ हृत्पुण्डरीकमासीनाय नमः। ॐ शक्राय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ वृषाकपये नमः। ॐ उष्णाय नमः। ॐ गृहपतये नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ समर्थाय नमः। ॐ अनर्थनाशनाय नमः। ॐ अधर्मशत्रवे नमः। ॐ अज्ञेयाय नमः। ॐ पुरुहूताय पुरुश्रुताय नमः। ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः। ॐ बृहद्गर्भाय नमः।

आशाशाटीकस्य पादारविन्दम् चेतः पेटिं वासितं मे तनोतुः कल्याणीनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वंगितं अनघं ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरंगमधिरुह्य चरस्मरारेः नेता समस्त जगतां वृषभाधिरूढः भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसन्ति कादम्बनीव कुरुते परितोषवर्षत् सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाक तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यतो। तो शिवानंद लहरी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, तुम्हारे में ही छुपे हुए परम आनंद का जो खजाना है उसको तुम निकाल नहीं पा रहे हो, इसीलिए संसार में तुम दीनहीन दुखी होकर भटक रहे हो। वास्तव में तुम इतनी संपन्न हो कि तुम्हें संसार में किसी के द्वारा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद बहुत संपन्न हो, लेकिन तुम्हें अपनी संपदा का बोध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दो चीज उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने, कल हमने संकेत किया था, इस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति भिखारी वह जहां रहता था, जहां सोता था, उस जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ था। जमीन उसी की है, उसी ने खरीदी थी जमीन। जमीन जिसकी है उस जमीन के अंदर जो खजाना है वह उसी का होता है, तो उस जमीन के अंदर का जो खजाना था वह भी उसी का ही है, लेकिन उसे पता नहीं है। या तो कोई भूगर्भविद उसको ये बता दे कि तुम्हारे जमीन के अंदर खजाना है, उसके बात पर विश्वास करके उसके उत्खनन में प्रयत्न किया जाए तो खजाना मिल सकता है। या फिर तंत्र और वनस्पति आयुर्वेद के हिसाब से कुछ विशेष काल में, विशेष मुहूर्त में विशेष वनस्पतियों का रसायन का निर्माण करे और वो रसायन आंख में अंजन के रूप में लगावे तो उसको जमीन के अंदर गड़े हुए खजाना दिखाई पड़ेगा। तो उस पर यहां संकेत कर रहे हैं शंकराचार्य जी श्लोक के द्वारा। तो वो रसायन क्या है? आंख में लगाने वाला अंजन। तो कल संकेत किया था ध्यानांजनम। खुद तुम यदि ध्यान का निरंतर अभ्यास करो तो उस ध्यान रूपी अंजन के द्वारा तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल और इतनी स्वच्छ हो जाएगा कि तुम्हें वो खजाना
दिखाई पड़ने लग जाएगा। शंकराचार्य जी शरीर को ही वह भूमि कहते हैं, शरीर को ही वह खेत की उपमा दी है। ये तुम्हारा जो शरीर है यह वह जमीन है जहां पर तुम नित्य रह रहे हो पैदा होने से आज तक, लेकिन वो जो शिव खजाना है वो भी यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन तुम भीख मांगते हुए संसार में भटक रहे हो। ध्यानंजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम। तम प्रदेश माने जिस जगह पर अंधकार रहता है उसको क्या कहते हैं? तम प्रदेश कहते हैं। अंधकार को तम, और अंधकार जिस जगह पर है जगह को प्रदेश, तम प्रदेश। अज्ञान कहां पर है? आपके पास अज्ञान जो है वो अज्ञान कहां पर है? तम प्रदेश क्या है? तम का प्रदेश क्या है? अज्ञान रहता कहां है? अज्ञान पांव में रहता है कि नाक में रहता है कि आंख में रहता है? कहां रहता है? ये माताजी कह रही हैं अज्ञान आंख में रहता है। अज्ञान अविद्या वेदांत का पर्यायवाची शब्द है। अज्ञान कहां रहता है? तो अंतःकरण रहता है। अंतःकरण में अविद्या अंतःकरण में रहती है। और तुम कहां रहते हो? तुम भी उसी अंतःकरण में रहते हो। और तुम्हारे यार कहां रहते हैं? परमात्मा कहां रहता है? वो भी अंतःकरण में रहता है। तो एक ही जगह पर रहने पर भी तुम परमात्मा को देख क्यों नहीं पा रहे हो? तो तम प्रदेशम, तम माने अविद्या के द्वारा आवृत हुआ हुआ है, ढका हुआ है। अब विचार करो, परमात्मा को देखने के लिए जानने के लिए अंधकार को हटाना जरूरी है कि नहीं? परमात्मा को जानने के लिए अंधकार को हटाना जरूरी है कि नहीं? नहीं है। कैसे उल्टी बात कर रहे हो तुम? परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप है, तो वह परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप होता हुआ अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, तो तुम कैसे उस अज्ञान को हटाओगे? परमात्मा नहीं हटा पा रहा है क्या अपने प्रकाश से अज्ञान को? तुम्हारी रोशनी और परमात्मा की रोशनी में कौन सी रोशनी अच्छी है, कौन सी रोशनी बलवान है? जहां तक गीता के हिसाब से विचार करें तो तुम्हारे पास जो प्रकाश है वो तो परमात्मा से आया हुआ प्रकाश है, है कि नहीं? गीता के हिसाब से यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तभी परमात्मा के जो प्रकाश है वह जीवात्मा को प्राप्त होगा। तो मूल सूर्य अंधकार को हटा नहीं पा रहा है, तो क्या सोलार की लाइट अंधकार को हटा पाएगा? बोलो, है? दिन के मध्यान्ह में चमकते हुए सूर्य जिस अंधकार को हटा नहीं पा रहा है, उस अंधकार को उसी सूर्य से चार्ज किया हुआ सोलार लाइट हटा पाएगा क्या? कल्पना कर लो, कल्पना कर लो, है ना? और यदि तुम अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करने का मतलब क्या हुआ? तुम तो सोलार लाइट हो,
तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो सोलार लाइट है, है कि नहीं बोलो। परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और तुम जो जानोगे वो बुद्धि के माध्यम से जानोगे, ध्यान देना। क्योंकि इस श्लोक पर मुझे थोड़ा सा वेदांत के प्रक्रियागत विचार करना था, इसलिए मैंने इसको स्वर उठाया। तुम्हारी बुद्धि तो सोलार पैनल है भाई, परमात्मा का लाइट सोलार पैनल में पड़ेगा, चार्ज होगा, तब जाके बुद्धि से तुम संसार के पदार्थों को जानते हो। और चार्ज न हो सोलार पैनल,

या गैस में या अन्य साधनों से पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिन में खूब धूप खिला हुआ हो तब तो पानी सुबह खूब गर्म गर्म मिल जाएगा, और कदाचित आज की तरह मौसम दिन भर बारिश हुई, धूप नहीं खिला, तो दूसरे दिन सुबह पानी गर्म नहीं मिलने वाला, क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा, सूर्य नहीं है तो क्या करेगा वो पैनल। इसी तरह अंतःकरण में तीन चीज हैं, समझे कि नहीं? अंतःकरण में तीन चीज है, एक तो स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है और तीसरा अविद्या है। तो अंतःकरण क्या हुआ? तम प्रदेश हुआ कि नहीं? परमात्मा प्रदेश भी हुआ, तम प्रदेश भी हुआ। अब इनमें से परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, जीवात्मा सोलर पैनल है, परमात्मा सूर्य है, जीवात्मा की बुद्धि सोलर पैनल है, और जीवात्मा जो जानेगा उस पैनल के माध्यम से जानेगा। तो अंधकार को अब हटाएगा कौन? बोलो, परमात्मा हटाएगा कि जीवात्मा हटाएगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, अब वो स्वयं प्रकाश होता हुआ वहां अंधकार रह गया। शिवानंद लहरी में, इसी शिवानंद लहरी में ये बात स्वयं शंकराचार्य जी ने प्रश्न के रूप में उठाया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, मैं गुनगुनाता रहता हूं। पहले व्याख्या हो चुकी है पिछले साल, मैं आज फिर प्रसंग आ गया, मैं सुना रहा हूं तुम्हें। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान शिव से, एको वारी जबांधव छिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभ विद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भवेन मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीयमे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव। इसी शिवानंद सलहरी में शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे शिवा, हमने देखा है एक वारिज बांधव सूर्य, वारिज माने कमल, कमल का मित्र माने सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं? वारिज बंधु, कमल का मित्र, क्योंकि कमल का एक नियम है, सूर्य उदय उदित होंगे, सूर्य प्रकट होंगे तो वो खिलेगा, और सूर्य अस्त हो गए तो बंद हो गए। व्यवहार में भी हमारा नियम क्या है? अपना खासम खास मित्र सामने आए तो चेहरा खिल उठता है, उठता है कि नहीं? और अपना कोई दुश्मन आ गया तो क्या चेहरा खिलेगा? प्रसन्नता होगी मन चेहरे में, लेकिन अपना पुराना मित्र आ जाए अचानक और मिल जाए, फिर देखो चेहरा। तो मित्र का काम क्या है? चेहरे को खिलाने का, है कि नहीं? बोलो, मित्र को देखते ही चेहरा खिल उठता है। लेकिन मित्र अकेले आए तो खिल उठेगा, लेकिन अपने बच्चे कच्चे चार पांच लेकर बंबई आ जाए तुम्हारा हॉलीडे मनाने, तुम्हारा चेहरा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा ना। अब वो एक हफ्ता बैठ जाएगा, तुम्हारा बैलेंस ही सब बिगड़ जाएगा, तो चेहरा सिकुड़ जाएगा। फिर भी

0: अंदर से चेहरा सुकड़ने पर भी बाहर तो दांत तो दिखाना ही पड़ेगा, व्यवहार के लिए करना पड़ेगा कि नहीं बोलो, नहीं तो क्या कहेगा वो। बड़ा भारी मित्र कहता था हम गए और अब दरवाजे ही नहीं खोली। बाहर जवान दवा, सूर्य का नाम है मित्र, सूर्य का नाम है वारिज बंधु मित्र एक, अकेला है अंतरिक्ष में, सूर्य अकेला ही है, अकेला है। दिन में 10 सूर्य नहीं होते अंतरिक्ष में, एक ही सूर्य होता है। एक वारिज बांधवा, सूर्य करता क्या है? क्षिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम, रात भर पृथ्वी और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ हुआ अंधकार को अपनी उपस्थिति मात्र से एक सेकंड में ही नष्ट कर देता है। किसी का मदद लेना पड़ता है सूर्य को है? धरती और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ हुआ रात्रिकालीन अंधकार को हटाने के लिए सूर्य को किसी का मदद लेना पड़ता है? अकेले हटा देता है, है? सूर्य में इतनी सामर्थ्यता है और तुम्हारे में कितनी सामर्थ्यता है? शंकराचार्य जी कहते हे शिव, त्वम कोटि सूर्य प्रभा, सूर्य में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसके करोड़ गुना प्रकाश तो तुम्हारे में करोड़ गुना। तम कोटि सूर्य, कोटि सूर्य सम प्रभा त्वम, सूर्य यदि 100 वोल्ट का है तो शिव 1000 वोल्ट के हैं। इस हिसाब से पता चले कि नहीं बोलो, सूर्य 100 वाट के बल्ब हैं तो शिव कितने वाट के हैं? हैं? करोड़ों वाट कम है बापा, इतना बड़ा भारी रोशनी है। तुम कोटि सूर्य प्रभा, ऐसी रोशनी तो ये शिव तुम्हारे में स्वाभाविक है। और 100 वाट जो रोशनी सूर्य में है वो तो तुमसे चार्ज होने पर है। सूर्य तो सोलर पैनल है, वो तुमसे चार्ज हो रहा है और तुमसे चार्ज होकर सूर्य में 100 वाट रोशनी का यदि पावर आ गया, करोड़ों वाट पावर तो तुम्हारे स्वरूप में है, किसी से चार्ज होना नहीं है, स्वाभाविक ही है। तुम कोटि सूर्य प्रभा, तब
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: विचार कर रहे थे भगवान श्री हरि सुपूजिताय मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय। भगवान श्री हरि आदिदेव जिनकी नित्य सुपूजा करते हैं। सुपूजा का अर्थ है, जैसा कि मैंने कहा था, पूजा दो तरह की होती है, एक बहिरंग पूजा और एक अंतरंग पूजा। अंतर पूजा को मानस पूजा कहते हैं। मानस पूजा के लिए बाहर से पूजा करनी चाहिए, बाह्य पूजा। बाह्य पूजा के बिना मानस पूजा नहीं हो सकती, अंतर पूजा नहीं हो सकती। सुपूजिताय मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय, अर्थात पूजा और सुपूजा। पूजा है बाहर से पुष्पादि को लेकर, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार आदि के द्वारा जो हम पूजा करते हैं, बिल्व पत्रादि को लेकर। और सुपूजा है कि जो हम मन से भगवान की पूजा करते हैं, मानस पूजा। बाह्य अंतर, बाह्य पूजा और भीतर पूजा के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और जिह्वा से भगवान का नाम ओम नमः शिवाय आदि का जप करना चाहिए। इस शिव नाम शिव शिव कहते हुए, शिव के इस पावन नाम के स्मरण से न जाने कितने असंख्या असंख्य पापी। मैं तो कई बार ये बात कहती हूँ कि भगवान ने अवतार लेकर के तो कुछ ही पापियों का उद्धार किया होगा, परंतु भगवान के नाम ने न जाने कितने असंख्य करोड़ पापियों का उद्धार कर दिया। क्योंकि पाप करने वाले पापी की एक सीमा है, किसी सीमा तक पाप कर सकता कोई, उससे अधिक क्या करेगा। क्योंकि जीव है, सीमित है, उसकी सोचने की सीमा है, उसकी करने की सीमा है, उसकी बोलने की सीमा है, एक सीमा पर जाकर वो रुक जाता है। परंतु वो क्षमा करने वाले भगवान अनंत है, असीम है, उनका कोई पारावार नहीं, आदि मध्य अंत नहीं है। इसलिए ऐसे अनंतांत करुणा वरुणालय भगवान आशुतोष चंद्र मौली चंद्र चूर चंद्रनाथ भगवान शिव हर लेते हैं, इसीलिए तो उनका नाम हर है। पापों को हरने के कारण उनका नाम हर है, वो हरते हैं, भक्तों के अज्ञान को हर लेते हैं। जन्मार्जित अनेक जन्मों में जो जमा किए हुए संचित पापादि हैं, उन सब पापों को भक्त का हरण कर लेते हैं, जब जो उनके पावन नाम के स्मरण के द्वारा उनकी शरण में जाता है। शिवाय गौरी वंदना जस्म, भगवती शिवा ने अर्थात गौरी माँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो नित्य भगवान शिव की वंदना करती हैं, अर्थात भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण करके, भगवती गौरी की ये प्रतिज्ञा है, ये हिमालय पुत्री है। भगवती के अनंत नामों में एक नाम गौरी भी है। पूर्व में जो सती थी वो बाद में गौरी बन करके हिमालय में प्रकट हुई। भागवत आदि में आप लोगों ने ये पौराणिक कथा, क्योंकि भगवान की ये कथा सुंदर, दक्ष के यज्ञ में सती ने देह त्याग किया, देह त्याग करने के अनंतर मन में अत्यंत भगवान शिव का अनुराग लिए हुए सती ने, सती का सामान्य अर्थ यही नहीं है कि सती केवल एक स्त्री की वो प्रथा है जो अपने पति के साथ में आग में जलकर मर जाती है, उसको सती कहते हैं। ऐसे सामान्य हमारे दिमाग में सती के प्रति एक ये धारणा बनी हुई है कि हमारे देश में पहले एक सती प्रथा थी। याद रखना, सती प्रथा की कोई बात नहीं है, सती कोई परंपरा नहीं है। परंपरा कहते हैं कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक निरंतर चली आ रही हो, ये कोई प्रथा, ये कोई परंपरा नहीं है। परंतु पूर्व में ऐसा होता था कि कुछ स्त्रियां जो अपने पति पर इतनी निष्ठावान होती थीं कि पति निष्ठा को रखते हुए वो पति के साथ शरीर को लेकर के सती हो जाती थी, एक अर्थ ये। और दूसरा, सती स्त्री भी हो सकती है, सती पुरुष भी हो सकता है। सती कोई परंपरा नहीं, सती तो वो मति है, वो बुद्धि है जो सत्य के ऊपर स्थिर है, जिसके जिस बुद्धि की सत्य पे स्थिरता हो गई उस बुद्धि का नाम सती है। सती मति होती है, बुद्धि होती है। जिस बुद्धि में सत्य के अतिरिक्त, जैसे गौरी की बुद्धि में, मां सती की बुद्धि में भगवान शिव के लिए यही वंदना है, इसीलिए तो कोटि जन्म रगर हमारी बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर की सती की भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति है। अत्यंत शिवानुराग से, शिव के अनुराग में, प्रेम में लीन जो वृत्ति है, बुद्धि है, वही सती है। वो सती क्योंकि भगवान शिव के चरणों में प्रीति रखते हुए यज्ञाग्नि में योग के द्वारा शरीर को समाप्त करने के उपरांत वह हिमालय के यहाँ उनकी पुत्री बन करके, हिमालय ने बहुत तपस्या की और उनके तपस्या के फलस्वरूप इस पवित्र हिमालय माने जो एक अत्यंत दृढ़ संकल्पी है। और हिमालय की विशेषता है कि हिमालय हमारे देश की ये महानता है नारायण, हमारे यहाँ पर्वत भी चेतन है, नदियां भी चेतन है, वन भी चेतन है, इसीलिए हम वनों की पूजा करते हैं। वृंदावन वन है और उसे चेतन समझकर पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत है पर गोवर्धन की भी परिक्रमा करते हैं, दूध चढ़ाते, उन्हें भी चेतन समझते हैं। हिमालय पर्वत है परंतु नाग पर्वत को भी हिमालय राज, पर्वताधि राजा कह, गिरिराज कहकर हम पर्वतों के राजा गिरीश कहकर हम हिमालय की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर्वत भी चेतन है। हमारी संस्कृति, हम नदियों को भी चेतन के रूप में देखते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि आदि जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों का हम पूजन करते हैं। हम इन्हें जड़ समझ करके नहीं, हमको इनमें भी चेतनता दिखाई पड़ती है। अर्थात हमने प्रकृति को क्या माना, चेतन माना। इसीलिए तो आगे नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में प्राय क्या करते हैं, 9 दिन देवी की उपासना करते हुए आप अपने अपने घरों में यवांकुरित करते हैं, यों को, जों को उगाते हैं और रोज उसको सिंचन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और उसको किस प्रार्थना करते हैं, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः, नमः प्रकृते भद्राये नियता स्प्रणता स्मृता, ऐसा कहकर प्रकृति देवी की आप पूजा करते हैं। प्रकृति को चेतन माना गया है, ये चैतन्य है क्योंकि जो चेतन सत्ता, जो चेतन है वह तो सचराचर में है, वो जड़ में भी है, चेतन में भी है। जो जड़ दिखाई पड़ रहे हैं वो जड़ता भी उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा मान करके हम सर्वत्र उस चेतन की पूजा करते हैं और वो चैतन्य रूप में ये सारी प्रकृति है। प्रकृति में नदी है, पर्वत है, वन है, सागर है, सब के सब चेतन है। नारा हिमालय राज चेतन है, उन्होंने भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न किया और समस्त देवताओं को आश्रय देने वाले हैं। उनके यहाँ गौरी के रूप में भगवती प्रकट हुई, जिनका नाम गौरी रखा गया। छोटी थी, गिरिराज हिमालय के यहाँ देवर्षि नारद का आगमन हुआ। माँ मैना ने मुनिवर के आगमन पर उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, बिठाया। और छोटी सी कन्या पार्वती उत्साहवश माँ ने अपनी पुत्री पार्वती को मुनिवर के चरणों में प्रणाम कराते हुए कहा, मुनिवर आपका पदार्पण हुआ है, ये मेरी कन्या है। माँ को बालिका के जन्म होने के साथ ही उसकी वर की चिंता होने लगती है, मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। धीरे से पार्वती को कहा कि माँ, तेरी पुत्री को जो वर मिलेगा वो दुनिया में निराला होगा, अनोखा होगा। ऐसा विलक्षण, ऐसा अनोखा, अद्भुत उसका रूप होगा कि ढूंढने पर भी कोई दूसरा प्राप्त निराला होगा। ये तो प्रशंसा की माँ मुनिवर के सम्मान के लिए, उनके लिए पूछने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करने गई। अवसर पाकर धीरे से पार्वती जी को कह दिया कि तुम्हारे पति तो भगवान शिव के हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करो। पार्वती को नमः शिवाय ये मंत्र देकर देवर्षि नारद यथास्थान को प्रस्थान कर गए और पार्वती की जन्म जन्म की प्रीति शिव चरणों के साथ उदित हो गई। और अब पार्वती अपने मन में दृढ़ निश्चय किए हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने का संकल्प करती है। तपस्या करने के लिए माँ से जब कहने लगी, माँ मैं तप करूंगी, प्रथम बार छोटी बालिका के मुंह से जैसे ही सुना कि मैं तप करूंगी तो माँ मैना करती हैं, तभी से माँ का नाम पड़ गया। जैसे हम लोग अचानक कोई बात सुने ऊह निकलती है मुंह से, तो ऊह माँ, अर्थात ऊह के साथ माँ शब्द, क्योंकि माँ हृदय के अंदर से प्रकट होता है। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कि जब कोई किसी को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, बरबस हमारे मुंह से एक शब्द निकल पड़ता है जिसका नाम है माँ। किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना, हाय बाप। जब भी मैंने सुना तो यही सुना, हाय माँ। अत्यंत पीड़ा होने पर, क्योंकि बालक का हृदय माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है और माँ कहते हुए पूरा मुंह खुल जाता है और बाप कहो तो बंद हो जाता है। जवान जहाँ बंद हो जाए, जवान जहाँ बंद हो जाए वो होता है पिता। माने पिता के आगे बात करने के लिए तुम्हें कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी और माँ के आगे बात करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। जो आपके जिह्वा में, जो आपके अंदर होता है वो आपकी जवान स्वयं वर्णन करने लगती। माँ से कुछ ऐसा कुछ संकोच नहीं होता, अर्थात जिसके साथ हम अपने हृदय को बांट सकें, कह सकें, वो माँ होती है। तो उमा निकला, तब से भगवती का एक नाम उमा भी पड़ गया, उमा, उ और मा शब्द, उमा। उमा नाम हुआ। और तप करने के लिए जब मन में निश्चय करने लगी, तप करने के लिए जाऊंगी, हट किया और सखियों के संग उन्हें हिमालय में तप करने के लिए जब वो चली, तो मृतिका की मिट्टी के शिवलिंग को बनाती हैं और उस पर पुष्प चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय गौरी वंदना च वृंदम, अर्थात गौरी भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर वंदन करके केवल क्या बोलती हैं, शिवाय नमः शिवाय, अर्थात शिव के चरणों में जो प्रणाम करती हैं, केवल ये कहकर हाथ जोड़कर वंदन करके भगवान शिव के समक्ष नमः शिवाय शिवाय शिवाय शिवाय इसी केवल एक मंत्र का आप जप करें। मैंने आपको कहा था कि इन पंचाक्षर में शिवाय शिवाय शिवाय अर्थात शी शी कहते हुए शिव शिव शिव अर्थात शिव के इस पावन नाम के स्मरण से नाम का बड़ा भारी प्रभाव है। नारायण नाम से कभी नामी अलग नहीं होता, शब्द से कभी शब्द का अर्थ अलग नहीं होता, शब्द से शब्द का अर्थ जैसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी भांति नाम से कभी नामी को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम स्वयं भगवान है, नाम की ऐसी महिमा है कि जैसे भग शब्द में, भग शब्द के अंदर सड ऐश्वर्य युक्त है, इसीलिए जो सड ऐश्वर्यों से युक्त है उसको हम क्या कहते हैं, ये विश्लेषण है, उसे हम भगवान कह देते हैं। तो उसी तरह याद रखना, नाम भगवान है, नाम भगवान है। इसमें छह विश्लेषण विशेषताएं हैं, नाम में समग्र ऐश्वर्य है, नाम में समग्र ज्ञान है, नाम में समग्र वैराग्य है, नाम में समग्र धर्म है, और नाम में समग्र यश है, और नाम में समग्र श्री है। ये छह चीजें नाम के अंदर रहती है। नाम में समर्थ ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, परमात्मा का शिवाश्वर्य, पवैश्वर्यम, शिव का ऐश्वर्य किसमें है, बोले शिव के नाम में। नाम से ये संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान शिव का प्रकट है। नाम में समग्र ज्ञान है, शिव का ज्ञान शिव के नाम में निहित है, नाम में छुपा हुआ है। और शिव का वैराग्य शिव के नाम में, समग्र वैराग्य की समग्रता नाम में है, ज्ञान की समग्रता नाम में है, धर्म की समग्रता नाम में है, ऐश्वर्य की समग्रता नाम में है, श्री की समग्रता नाम में है, यश की समग्रता नाम में है। ये छह चीजें नाम में रहती हैं, इसलिए ये नाम भगवान है, शिव नाम ही भगवान है, ऐसा समझ करके निश्चय करके हमें शिव का स्मरण करना चाहिए, अर्थ सहित अर्थ को ध्यान में रखते हुए। यदि हम नाम का स्मरण करेंगे तो उस नाम स्मरण के द्वारा सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम लेने वाली जिह्वा, इस जिह्वा की पवित्रता। इसीलिए कहा गया है कि जिह्वा पवित्र हो, नहीं तो ये हमारी जिह्वा बड़ी अपवित्र है। अपवित्र है कहने का अर्थ यह है, कभी किसी को कहती है तू बड़ा, कभी किसी को कहती है तू बड़ा, कभी धन को बड़ा, कभी परिवार को बड़ा, कभी पुत्र को बड़ा, कभी पत्नी को बड़ा, कभी किसी को बड़ा बताती है, कभी किसी को बड़ा बताती है। वास्तविकता से सोचो तो हमारी जिह्वा का कार्य तो ऐसा है जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जो स्त्री एक की नहीं होती है, जिसके बहुत पति होते हैं, अर्थात वो किसी को पति, कोई उसका पति नहीं है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, ऐसी जो स्त्री है उसे दुराचरणी, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वैसी उस दुराचरण स्त्री को जैसे अपवित्र कहा गया है, उसी भांति हमारी जिह्वा भी तब तक अपवित्र है जब तक संसार में और को का बखान करती रहती है, ये भगवान की जिह्वा नाम का बखान नहीं करती, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण नहीं करती। इसलिए बहुत से लोग ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम अपनी जिह्वा से भगवान के नाम के अतिरिक्त व्यर्थ कोई दूसरा नाम अपनी जिह्वा से लेंगे नहीं। संयम है, जैसे प्रथम दिन मैंने आपको कहा था, एक वाणी है, जीव है हमारे पास, और दूसरे ये कान है। इन दोनों के जरिए, इन दोनों के माध्यम से भगवान को हम अपने हृदय में अच्छी तरह से ला सकते हैं। नेत्र हैं, इससे भी भगवान को ला सकते हैं। जिभ्या से जब भगवान का शब्दोच्चारण करती हैं, तो ये वाणमय रूप है भगवान का शब्द, और इस वाणमय रूप से हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए, ये नाम की बड़ी ताकत है। नारायण, यूं तो कहा है कि यदि विधिना ने किसी के माथे में मेत कुछ कठिन लिख दिया, शब्द महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மகிமா பிரசன்டட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: கோஸ்வாமி ஜி லிக்கதே ஹே கி யதி மந்திர மகாமணி விஷய வியாலக. மந்திர எக் ஐசி மணி ஹே ஜோ விஷயோ கே வியால் கோ தூர் கர்னே வாலி ஹே, விஷ கோ தூர் கர்னே வாலி ஹே. யூ தோ விதாதா கோ பி யே தாகத் நஹீ ஹே கி ஹமாரே மஸ்திஷ்க மே யதி விதினா நே குச் கடோர் லிக் தியா ஹே, குச் கடினதா லிக் தி ஹே, தோ ப்ரஹ்மா ஜி சாஹே, விதி சாஹே कि मैं अब इसको बदल दूं, तो विधाता भी हमारे प्रारब्ध के विधिना के विधि को जो हमारे मस्तक पर उसने लिख दिया है, अर्थात जीव ने जो अपने भाग्य में लिखा लिया है, उस भाग्य को मिटाने की बदलने की ताकत ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है. स्वयं ब्रह्मा चाहे मैं इसमें कुछ हेर फेर कर दूं, नहीं कर सकते हैं, परंतु इस मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि वो मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल कहते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क में यदि विधिना ने कुछ कठोर लिख दिया है तो उसे मिटाने की ताकत है किसको? बोले भगवान के नाम को, भगवान के मंत्र को. इसलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए. इस जप के कारण, और ये जप कैसे करना चाहिए? बोले ऐसा नहीं कि ये जप कैसे जपें, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दस दिशु. भाव से आप नाम लें, कुभाव से आप नाम लें, आलसी आलस में आप नाम लें, और स्वस्थ होकर आप नाम लें, कैसे भी नाम लें. भाव कुभाल अनख आलसु, नाम जपत मंगल दश दिशु. नाम, परंतु इस नाम का प्रभाव ऐसा है कि जैसे भी कोई भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो निश्चय रूप से उसका फल तो उसे मीठा ही प्राप्त होगा. जैसे कि मिश्री की डली, मिश्री की डली को आप कैसे, मिश्री को कैसे भी खाएंगे, उसमें मिठास के अतिरिक्त आपकी जिह्वा को और कुछ मिल ही नहीं सकता. किसी भी कैसे भी आप बैठ के खाएं, चल के खाएं, लेट के खाएं, मिश्री आपके मुख में मिठास ही प्रकट करेगी. परंतु वही मिश्री कभी कभी, एक बात ये भी होती है, कभी कभी वही मिश्री किसी पित्त के रोगी को खाने के लिए दे दी जाए तो पित्त के रोगी को मिश्री मीठी नहीं लगती है, उसको बड़ी कड़वी लगती है. और कड़वी मीठी लगने से वो कहता है मिश्री ये क्या है, बड़ा कड़वा है. तो यदि कोई मिश्री को कड़वी बताए आपके सामने, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आप उसकी बात मान लेंगे? आप ये बात कभी मानने को तैयार नहीं है कि मिश्री कड़वी है. आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, आपने उसका स्वाद लिया है, अनुभव किया है, तो आप यही कहेंगे मिश्री कड़वी नहीं होती, मिश्री कड़वी नहीं है. और वो कहे कि मुझे कड़वी लग रही है, तो आप कहेंगे भैया मिश्री तो कड़वी नहीं है, पर हो सकता है तेरी जवान में कुछ विकार हो, तेरे मुख में कोई बीमारी हो जिसके कारण तुझे कड़वी लग रही है, पित्त के कारण तुम्हें मिश्री कड़वी लग रही है. तो वैद्य लोग जानते हैं क्या ऐसे आदमी के लिए क्या उपचार करते हैं? जिसके अंदर पित्त रोग बहुत बढ़ जाता है, जब पित्त बढ़ता है शरीर में तो हमारे अंदर कड़वापन आने लगता है, मुंह में कड़वा कड़वाहट आने लगती है, और उस कड़वेपन में मिश्री भी कड़वे लगने लगती है. तब पित्त की दवाई में वैद्य लोग मिश्री का मिश्रण करते हैं, मिठास मिलाते हैं और धीरे धीरे पित्त की औषधि हमेशा मीठी होती है और धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे औषधि शरीर में पहुंचती है पित्त रोग कम होने लगता है और उस दवाई के खाने वाले को उसे मिश्री की मिठास उसकी जवान को मालूम पड़ने लगती है। उसी भांति हमारे अंदर भी कभी कभी पित्त का रोग इतना बड़ा हुआ है। ये पित्त कौन सा बड़ा हुआ है? संसार के विकारों का पित्त इतना बढ़ गया है जिसके कारण हमारे मन को ये मिश्री मीठी नहीं लगती है, अर्थात भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है। बहुत से लोग कह देते हैं राम राम करते तो हैं, पर हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। कृष्ण कृष्ण करते तो हैं, पर कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राम राम कहने से, शिव शिव कहने से हमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लगता नहीं, उनकी जिव्या में कुछ उसका रस नहीं आता, स्वाद नहीं आता, कुछ मिठास सी नहीं लगती है। बोले कारण, कारण यह है कि उनके अंदर भव रोग बड़ा हुआ है, संसार का रोग इतना बढ़ गया है, विषयों की वासनाएं इतनी प्रचुर मात्रा में उसके अंदर भर गई है कि उसे संसार के विषय ही अच्छे लगते हैं, संसार के भोग ही अच्छे लगते हैं, संसार की वार्ता ही अच्छी लगती है, संसार के ये कहना सुनना बोलना विचारना संसार के प्रति ही उसे अनुराग है, वही अच्छा लगता है और उसी में वो निरंतर रमण करता है। जैसे नारायण गुबरेला होता है ना, गुबरेला एक गोबर में पैदा होने वाला कीड़ा, गोबर का कीड़ा उसे कहते हैं गुबरेला। उस गोबर के कीड़े को गोबर के अंदर जो आनंद मिलता है उसे गोबर से निकाल करके किसी साफ सुथरी जगह में रख दो तो धीरे धीरे खिसक खिसक कर वो वही उसी गंदगी में जाकर अपने को प्रसन्न पाता है। उसी तरह से हमारा मन उस गुबरेले के समान हो गया है कि जो संसार में संसार रूपी गोबर के अंदर रहकर अपने को सुखी पाता है क्योंकि बहुकाल बहुत समय से इसे अभ्यास हो गया है। संसार के सहारे जीने का इस मन को आदत पड़ गई है। याद रखना, मन हमेशा जीवित रहने के लिए, मन हमेशा चलने के लिए उसे किसी वैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। बिना किसी सहारे से किसी का मन नहीं चल सकता। एक बात याद रहे, मन कहते हैं ना, मन तो कभी आपने गंभीरता से अपने मन के लिए सोचा कि ये मन आखिर कैसा है, ये मन का रूप क्या है, ये मन क्या चीज है? यदि आपने विचार किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आपने अपने आप में मन का रूप खोजने के लिए जब आप चले होंगे तो आपको मन किसी न किसी, मन का वास्तविक अपना कोई रूप न होते हुए भी मन अपने रूप को बना लेता है। इसलिए ये मन बहुरूपिया है, बहुरूपिया। बिना किसी मन जब कभी भी मिला तो किसी न किसी रूप में मिला, किसी न किसी आकार में मिला और किसी न किसी सहारे से मिला। ये मन वास्तव में जिस मन जिसके सहारे चल रहा है, संसार के सहारे चल रहा है, तो संसार का आकार इस मन ने ग्रहण किया हुआ है। और संसार का आकार संसार को क्यों पकड़ा हुआ है? बोले संसार को सत समझा है, इसलिए संसार के सहारे इस मन को जीने की आदत पड़ चुकी है बहुत समय से, अभ्यास। इस अभ्यास के कारण उसे संसार के सहारे चलना बड़ा सरल सुगम लगता है। पर कहो किस मन को संसार से हटाकर राम के सहारे चलाओ, भगवान के सहारे चलाओ। अभ्यास नहीं है ना तो बड़ी घबराहट होती है। बात केवल अभ्यास की है। अभ्यास की बात ये है कि एक आदमी बिल्कुल नया नया ड्राइविंग करना सीखा है और एक बहुत समय से सीख गया है, वो निष्णात है, और जो हमेशा अच्छा ड्राइवर है, जिसने गाड़ी चलानी बहुत बढ़िया सीख ली, उसे गाड़ी चलाते हुए कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि वो गाड़ी चलाते हुए एक आनंद का अनुभव करता है और उस आनंद के साथ हंसता बोलता खाता बात करता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ गाड़ी चला रहा होता। और जो बिल्कुल नया है, जिसे अभ्यास नहीं है, उसे घबराहट है, पसीने आते हैं, हाथ पांव ठंडे होते हैं, उसे लगता है, डर लगता है कहीं गाड़ी लग न जाए। तो ये क्या है? अभ्यास है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हमें भगवान के सहारे चलने के लिए कहा जाए तो पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर यही निश्चय नहीं है कि भगवान है या नहीं। जब हम सुनते हैं तब हमें लगने लगता हाँ भगवान है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है भी कि जब कोई विपत्ति आती है और हम कुछ चाहते हैं, हमारे मन के अनुकूल हमें नहीं मिलता है तो हमें शंकाएं होने लगते हैं। अरे हमने भगवान को इतना याद किया था और हमें ये चीज नहीं मिली, इसका मतलब भगवान है भी कि नहीं भी है। फल मिल जाए, इच्छा पूरी हो जाए तो हम सोचते हाँ ये बात भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान है। और नहीं मिला, कुछ चाहते थे नहीं मिला, तो प्रश्न शंका होने लगती है भी कि नहीं है। तो कहने का अर्थ था मेरा कि जो इस प्रकार में है नहीं है नहीं है नहीं, इनमें उलझे हुए हैं, द्वंद्व है, दृढ़ता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और स्पष्ट बुद्धि है, निश्चय दृढ़ नहीं है, और ऐसे में हम कहें कि हमारा मन भगवान में। माता जी आप बात तो बहुत अच्छी कहते हैं, परंतु भरोसा विश्वास निश्चय जो होना चाहिए नारायण वो नहीं हो पाता है, डगमगा जाता है। तो परिणाम तो ये है कि हमारे मन में हमें दृढ़ करना होगा, निश्चय करना होगा, मन को सहारा देना होगा, मन को राम के सहारे शिव के सहारे से चलाने की आदत पड़ेगी, तो तब शिव शिव नाम रटते हुए शिवमय नाम हो जाए, मन हो जाए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्णमय मन हो जाए, राम राम कहते कहते राममय मन हो जाए, हमारा मन का आकार भगवदाकार हो जाए, भगवतमय हो जाए। इसलिए हमें इतना अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कब बढ़ेगा? धीरे धीरे ज्यों ज्यों ये मन भगवान की ओर नाम की ओर बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों इस मन को रस की अनुभूति होने लगेगी, रस के आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। और इसीलिए भगवान के नाम का सतत सतत जप करना चाहिए। और इस नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता, क्या ऐसी क्या नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? गोस्वामी जी कहते हैं कठित क्वंक भाल के विधिना का लिखा हुआ मस्तक का कठोर भी बदल जाता है। भगवान शिव दृढ़ तपस्या में है, शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, अर्थात इतने वैराग्यवान हैं, उन्हें जगत की कोई चिंता नहीं, परंतु माँ गौरी ऐसे वैराग्य मन में अपने प्रति अनुराग, शिव के हृदय में अनुराग प्रकट करना चाहती है। और माँ ने नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया, भगवान के चरणों में वंदन किया, और ऐसे भगवान शिव जो ज्योतिष के सूर्याय अर्थात सूर्य ज्योतिष की गणना में सूर्य से ये गणना आरंभ होती है। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष ब्रह्म का नेत्र है। ऐसा नहीं है कि ये ज्योतिष भी एक शास्त्र है। धनुर्वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये स्कल्प, ये सब वेद के अंग माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र तो है, परंतु उसकी गणना आरंभ होती है सूर्य के साथ। सूर्य के साथ जो 27 नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों में जो तारा मंडल है, उसके साथ ये गणना आरंभ होती है। और ये सूर्य स्वयं किसके आश्रित हैं? जिससे सारा सूर्य चलता है, ये सूर्य के रूप में स्वयं भगवान शिव के संग कृपा से, भगवान शिव इनके अधिष्ठान देव हैं, अर्थात अधिष्ठात्र देव हैं। भगवान शिव से सूर्य और सूर्य से, मैंने कल आपको कहा था, सूर्य चंद्र बंदी नयन, इसलिए भगवान शिव को शिव के समान ज्योतिषाचार्य और कोई है नहीं। ज्योतिष विद्या में, वेदांत विद्या में, महिमा में शिव से बढ़कर के और दूसरा कोई देव नहीं नारायण। इसलिए भगवान सूर्य जिनके लिए नित्य वंदना करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव जो स्वरूप है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, अर्थात दक्ष यज्ञ क्या, दक्ष के अभिमान को, कर्मा अभिमानी देव है दक्ष, अर्थात जो लोग दक्ष के अंदर अभिमान हो गया था, ये कथा सुनी है कि जिस अभिमान के कारण शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने सोचा कि मैं उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रण नहीं दूंगा, भगवान शिव को नहीं, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। दक्ष के मन के अंदर ये अज्ञान था। ऐसी पौराणिक कथा आती है कि एक बार प्रजापतियों की सभा लगी हुई थी। दक्ष बनाता है, दिए बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्तियां बनाता है, ये सब आकार बनाता है, वो भी प्रजापति है। और इन सब प्रजापतियों के अध्यक्ष कौन है? बोले सकल सृष्टि के, अखंड अखंड ब्रह्मांड के जो अधीश्वर है, समस्त प्रजा के जो पति हैं, बोले वो कौन है? भगवान शिव है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, ये मूर्तियां बनाई। इस पर मुझे एक सुंदर सा प्रसंग स्मरण हो रहा है कि एक भक्त भगवान से वार्तालाप कर रहा था। भक्त और भगवान का संवाद चल रहा है और मधुर संवाद में कभी कभी भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान के साथ झगड़ा भी करते हैं। जहां अतिशय प्रेम होता है ना, वहां झगड़ा भी होता है। भक्त अपने भगवान से कह रहा है, भगवान आप क्या समझ रहे हैं कि मैं ही बड़ा हूं? नहीं, आपके बड़े वाली कोई बात नहीं है, बड़ा तो मैं हूं आपसे। आप बड़े नहीं है, आपसे बड़ा मैं हूं। भगवान कहते हैं, अच्छा तू मेरे से बड़ा है? हाँ मैं आपसे बड़ा हूं। भगवान ने कहा, मुझे इस बात में तू मेरे से बड़ा बन, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तू अपने आप को जो मुझसे बड़ा बता रहा है, बन रहा है, तो आखिर बड़ा बनने का कारण क्या है, बात क्या है, ये मुझे समझा दे। भक्त ने कहा, प्रभु बात यह है कि आपका और मेरा काम एक है। आप भी मूर्तियां बनाते हैं, आपसे बढ़कर के शिल्पकार और कौन? ऐसी मूर्ति, ऐसी मूर्ति कब से ये सृष्टि चली आ रही है, और जब से ये सृष्टि चली आ रही है, सृष्टि में असंख्य असंख्य प्राणी, और उन असंख्य असंख्य प्राणियों में एक मनुष्य है, असंख्य असंख्य असंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने मनुष्य भगवान ने पैदा कर दिए, पर आज तक कभी किसी की सकल से सकल, अकल से अकल किसी की मिलती नहीं। भले ही कहते हैं ये हम सकल है, पर कहीं न कहीं भगवान का सांचा सबके लिए अलग अलग अलग है। एक सांचे में भगवान ने किसी को नहीं डाला, अर्थात सबकी अलग एक ऐसी विलक्षण, इतना बड़ा शिल्पकार भला और कौन हो सकता है। आपने भी मूर्तियां बनाई, मैं भी मूर्ति बनाता हूं। भगवान ने कहा इसमें और बड़ी बड़ी बात क्या है फिर? तू भी मूर्ति बनाता है, मैं भी मूर्ति बनाता हूँ, तू कहता है तो ठीक है, पर इसमें बड़े होने वाली बात क्या है? का बड़े होने वाली बात ये है कि आपने ये जगत में मनुष्य आपने मूर्ति बनाई, इसीलिए हम कहते हैं कितनी मूर्ति हो, अर्थात मनुष्य भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। कहा महाराज मैंने भी मूर्ति बनाई है। तब भगवान ने पूछा इसमें बड़े होने वाली क्या बात? बड़े होने की बात तो है ये आपकी बनाई हुई जितनी मूर्तियां हैं ना, ये सारी की सारी मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। ये जो मंदिरों में कहीं पर भी हम मूर्ति रखी हुई है तो ये किसके बनाई हुई मूर्तियां हैं? चाहे वो पट मूर्ति हो, चाहे स्थिर मूर्ति हो, जो भी मूर्ति है वो मूर्ति को बनाने वाला कोई मूर्तिकार है ना? तो कहा कि इस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और सबने उस मूर्ति की पूजा की, उसको हाथ जोड़ा, उसको सराहाया, उसे आंखों में रखा, उसकी प्रसन्नता की, प्रशंसा की, वाह क्या बढ़िया बनाया, क्या बढ़िया बनाया। ये सारी प्रशंसा करने वाला, सराहने वाला, वाई वाई करने वाला, तारीफ करने वाला, उस मूर्ति को चित्त में रखकर उसकी पूजा करने वाला कौन है? ये भगवान की मूर्तियां नहीं है तो और कौन है? कहा प्रभु इसलिए मैं आपसे बड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू बड़ा बन जा। तो कहने का अर्थ था मेरा, ये तो एक भक्त और भगवान का संवाद है कि भक्त भगवान से ये बात कहता है कि प्रभु मैं आपसे बड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ बात चर्चा चल रही थी कि दक्ष है प्रजापति, उन्होंने प्रजा का पालन करना है, उन्होंने सोचा कि मेरे कर्म में मैं सबसे बड़ा हूँ, प्रजापति हैं, प्रजा के प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष ने सोचा था कि मैं ही बड़ा हूँ। भगवान शिव की सभा में बैठे हुए थे, सब उठकर खड़े हो गए, वो उठे नहीं। दक्ष के मन में ये रंज हो गया। बहुत लंबी कथा है इसके पीछे कि सरापा श्रापी हुई, भागवत में, देवी भागवत में सब में विस्तार से ये कथा आती है, पर कथा के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। बात केवल इतना मैं आपको कहना चाहती थी, दक्ष ने सोचा कि मैं शिव के बिना यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में शंकर को निमंत्रण न देकर, न बुला करके मैं उन्हें ये एहसास करा दूंगा कि तुम्हारे बिना भी मैं यज्ञ कर सकता हूं, अर्थात शिव से रहित होकर वेद के भी सृष्टि का कार्य चल सकता है। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? वो यज्ञ असफल हो गया, वो यज्ञ विध्वंस हो गया, वो यज्ञ नाश का सृष्टि के लिए नाशकारी होने लगा, वो यज्ञ सृष्टि के लिए अमंगलकारी होने लगा। तो समस्त देवता लोग जाकर भगवान शिव की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दक्ष की अज्ञानता के कारण सारी सृष्टि में अमंगल होने जा रहा है, सृष्टि का अनहित होने जा रहा है, हे कृपा निधान, हे आशुतोष, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, बचा लीजिए प्रभु इस सृष्टि के विनाश से, सृष्टि के अमंगल से, सृष्टि के अशुभ से, आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। भगवान शिव ने कृपा की और शिव से ही शुभ उत्पन्न हुआ, शिव से ही सृष्टि का मंगल हुआ, शुभ शिव से ही सृष्टि का कल्याण हुआ। वो देव अर्थात जो सकल जगत के अर्थात अनंत अनंत ब्रह्मांड के जो मंगल है, कल्याण है, शुभ है, वही सनातन है, वही शिव है, वही हम सबों की आत्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे भगवान शिव हम सब लोगों के लिए परम मंगलदायी कल्याणदायी हों, उनका नाम स्मरण करें।

है, इसलिए जगत क्या है, मिट्टी में दिखने वाले घड़ा की तरह मिथ्या है। घड़ा घड़ा मिथ्या क्यों है घट, क्योंकि एक शब्द याद रखना, मिथ्या शब्द के लिए, मिथ्या की व्याख्या, कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम, जो अपने कारण से पृथक नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, मैं हूं जगत है, अहम अस्मि जगत अस्ति, मैं जान रहा हूं जगत भी हमको पहचान में आ रहा है, अहम भाति जगत अपि भाति, जगत न अस्ति अहम, जगत नहीं रहेगा अगली क्षण, नहीं रहेगा ऐसा मैं अगली क्षण रहूंगा कि नहीं, मेरा कभी अभाव नहीं है, पहले भी था अब भी हूं और आगे भी रहूंगा, इसलिए अहम अस्मि अस्मि अस्मि, जगत अस्ति अभी क्या है, नास्ति, अहम भामि मैं जान रहा हूं कि हूं और हूं इसलिए जान रहा हूं, बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपि, बाल्य अवस्था जाग्रत अवस्था सब अवस्था में अहम आत्मा का कभी भी अभाव नहीं है, मन का अभाव हो जाता है, मन बदल जाता है, इंद्रियां बदल जाती है, ये क्या इंद्रियां बदल गई कि नहीं, पढ़ते पढ़ते पुस्तक दूर जाती है, क्या है आंख बदल गई कि नहीं, और वेदांत में आते हैं ये क्या हो गया, कान गया, कभी कभी दो स्वामी दिखते हैं, हो जाता है कि नहीं, ये सब बदलता है, मैं बदलता नहीं हूं, और बदलने की चीज को जानने के लिए जो देखने वाला है वो अचल ही होना चाहिए। ट्रेन चल रही है किसको मालूम पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है उसको मालूम पड़ता है। तो अहम अस्मि अहम भामि जगत अस्ति अभी नास्ति, अभी भाति नहीं है, इंद्रिय अस्ति सोने पे नहीं है, शरीर छूटने के बाद नहीं है, मन अभी है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये सब आता है जाता है, आत्मा न आता है न जाता है। अभी ये जगत आत्मा पे निर्भर है कि आत्मा जगत पे निर्भर है, जगत आत्मा पे निर्भर है, अगर मैं नहीं होता तो जगत का ज्ञान किसको होता, मैं नहीं होता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसको दिखती, अगर मैं नहीं होता तो शरीर का स्वास्थ्य कैसे मालूम पड़ता, आप लोगों को मालूम है डॉक्टर किसको पूछते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है, किसको पूछेंगे, पेशेंट को, और पेशेंट कहेंगे अमेरिकन होगा हाउ आर यू, इनकी प्रूफ नहीं अच्छा ना बुराई से बताएंगे, ठीक नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, कौन बताएगा, आप ही बताएंगे, शरीर की स्थिति हमको मालूम है, मन की स्थिति मालूम है, और सब कुछ क्या है, बाहर की वेदर की तरह बदलता हुआ है। फिर से आइए, कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम, मैंने ये जो कपड़ा पहना हुआ है वो सचमुच में क्या है, धागा ही है, रुई है, रुई के बिना कपड़ा नहीं हो सकता है, तो कपड़ा मिथ्या है, क्योंकि रुई से धागा से उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम, ये जगत जो दिख रहा है, भास रहा है, बदल रहा है, किसी ने कहा जगत सत्यम वाय दृश्यत्वात्, किसी ने कहा जगत सत्य है क्यों दिख रहा है, हमने कहा जगत मिथ्या दृश्यत्वात्, वही लॉजिक। देखो एक बात है, बलवान आदमी के सामने
अगर

जो आदमी लट्ठा लेके जाएगा, लकड़ी लेके जाएगा, डंडा लेके जाएगा, तो क्या होगा? वो बलवान आदमी उसी की लकड़ी लेके किसको पिटेगा? उसी को पिटेगा। ये लोग हमारे सामने लॉजिक लेके आते हैं, जगत सत्यम दृश्यत्वात्। हम लोग कहते जगत मिथ्या, क्यों? दृश्यत्वात्। कैसे? स्वप्नवत। स्वप्न भी दिखता है पर मिथ्या है, जगत भी दिखता है मिथ्या है, जो दिखे वो मिथ्या। बौद्धों ने आके कह दिया जगत सत्यम व्यावहारिकत्वात्। उन्होंने कहा जो उपयोगी होता है वो सत्य होता है। हमने कहा कि नो, जो व्यवहार योग्य होता है, इसको संस्कृत में शब्द है अर्थ क्रियाकारित्वम, उपयोगिता है, घड़ा उपयोगी है इसलिए सत्य है। हम कहते हैं जो उपयोगी होता है वही मिथ्या है, वही लॉजिक, वही डंडा उसको मारते हैं। तो मिथ्या का अर्थ होता है वो सत्य के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। आप चलते हैं धूप में, आपकी परछाई पड़ती है, परछाई क्या है? मिथ्या। आप क्या है? सत्य। परछाई है आप है, परछाई नहीं है आप नहीं है। ठीक है, बोल भाई। तो मैं जानना चाहता हूं, सोए हैं, जागते हैं, क्या करते हैं सुबह सुबह? मेरा प्रतिबिंब भी दिखे मैं हूं, प्रतिबिंब न दिखे अरे मैं कहां चला गया, ये नहीं मैं हूं। अहमस्मि सदा भामी कदा चिन्नाहम अप्रिय ब्रह्मैवाहम तत्सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम। अहम आत्मा, अस्मि अहमस्मि सदा भामी, कभी अपना भान स्वरूप आत्मा का अभाव होता नहीं। आई एम कॉन्शियसनेस, ईसनेस ऑफ कॉन्शियसनेस डजंट कम टू एंड। अहमस्मि सदा भामी। और सबसे ज्यादा प्रिय दुनिया आपको कौन है? सच बोलिए स्वामी जी, बेटे का बेटा वो मेरे जान से भी प्यारा है। नहीं, आप ही प्यारे हैं। वो आपको प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि आपको वो अभी सुख देता है, आपकी बात मानता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बेटा आपकी बात नहीं मानता है, कौन मानता है? पौत्र मानता है। वो भी जब कहेंगे व्हाट ग्रैंडपा, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, हो गया पूरा, वो दिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ही लिसन्स टू यू और वो आपको ठीक तरह से पहचानता नहीं है। इसलिए वो जब पहचानेगा आप क्या है तो वो भी भागेगा आपसे। तो देयरफॉर यू लव हिम कंडीशनल। और व्हाई डू यू लव हिम? बिकॉज ही मेक्स मी हैप्पी, दैट्स व्हाट आई वांट टू बी हैप्पी। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबसे ज्यादा प्यारा अपना आत्मा है। एक दिन स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने मुझे कहा कि चार बाबा जी बैठे, बड़े बड़े दाढ़ी है और सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, तो सबसे पहले किसकी बुझाओगे? किसकी बुझाओगे? अपनी। आप लोग कह रहे, मैंने कॉल ड्रेस्टिक एग्जाम्पल। ओके महाराज, आत्मा का, आत्मा के प्रति जो प्रेम है, न कदाचित अहम अप्रिय है। अगर मैं दुखी हूं तो मुझे पसंद नहीं है, दुखी मैं पसंद नहीं हूं, जो दुख से छूटना चाहता हूं, मानी मैं सुखी रहूं, ये मैं अपने को देखना चाहता हूं। मैं तो अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, क्योंकि आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अहमस्मि सदा भामी कदा चिन्न हम प्रिय ब्रह्मैवाहम अतसिद्धम। मैं ही ब्रह्म हूं पूर्ण रूप, सच्चिदानंद लक्षणम। अभी कहते हैं ये दृश्यमान नगरी दर्पण से अभिन्न है, ऐसे हमारे भीतर देखने वाला ये जगत
हमसे अभिन्न है माने मिथ्या है। मैं और मेरा प्रतिबिंब मिलके कितना होता है? दो होता है कि नहीं? आप लोग कौन सा गणित पढ़े स्कूल में? ठीक, एक पत्ता एक क्या होता है? आपका नया गणित है। और मल्टीपल इमेज दिखे साथ में, आईना रखे, आप 100 दिखते हैं, एक पत्ता 100 कितना हो गया? ये क्या गणित समझ आते हैं? मिथ्या और मैं मिला के कहता रहता हूं एक ही रहता है। ये मिथ्या जगत आत्मा में प्रतीत होने पर भी मैं क्या हूं? अद्वयम्।

श्री गुरु मूर्तये। देखो भाई, आप किसी व्यक्ति को गुरु करके बुला सकते हैं? किसी ने एयरपोर्ट में हमसे पूछा, आर यू गुरु? अमेरिकन लोग ऐसे हैं, आर यू गुरु? आपका क्या उत्तर होगा? अगर आप भी अगर ऐसे हमारे जैसे ड्रेस पहनते हैं और पूछे, कोई पूछे आप गुरु है गुरु माई है, आप क्या कहेंगे? हाँ? मैंने कहा कि मैं गुरु नहीं हूं, जब मेरा चेला मेरे से पढ़ता है तब मैं गुरु हूं, बाकी मैं स्वामी हूं, है कि नहीं? अगर आपको कोई पूछे आप पत्नी है तो क्या कहेंगे आप? जब मेरे पति परमेश्वर, इंग्लिश में कहते हैं पत्नी को बेटर हाफ, अगर पत्नी बेटर हाफ है तो पति क्या है? वर्स्ट हाफ। ओके, सो आई एम अ बेटर हाफ। मैं अगर पत्नी हूं, कोई पत्नी मिल कोई होती है? आप कहते हैं मैं स्त्री हूं, जब मेरे पति परमेश्वर का सानिध्य रहता है तो मैं क्या हूं? पत्नी हूं, बाकी पत्नी नहीं हूं। गुरु भी क्या है? जब शिष्य को पढ़ाते हैं और शिष्य भी पढ़ रहा है, कभी कभी शिष्य सामने बैठा ही होता है, पढ़ता नहीं होता है, गुरु का भी प्रारब्ध होता है ना। महाराज से सुना रहे थे भागवत भाग में, किसी कथा में एक माई आगे आके बैठ गई और बड़ी झूमती थी कथा में, महाराज की कथा सुन सुन के। तो महाराज को बड़ा उत्साह हुआ कि कोई तो आनंद से सुन रहा है कथा। तीन दिन के बाद उसका पति आया, उन्होंने कहा, महाराज ने कहा तुम्हारी पत्नी हमारी कथा का बड़ा आनंद ले रही है। कि महाराज जी जाने दो, कि क्यों, क्या बात है, वो तो सुनती नहीं है। वो तो बहरी ऐसे ही बैठती है आपके सामने। तो महाराज जी गुरु नहीं रहे क्योंकि वो समझती नहीं थी कुछ। दो कथाकार चर्चा कर रहे थे, एक ने कहा जब मेरी कथा में श्रोता लोग घड़ी की ओर देखते हैं तो मेरा उत्साह मर जाता है क्योंकि बोर हो गए हैं। दूसरा कहता है आप तो नसीब वाले भाग्यवान है, आपकी कथा में घड़ी में देखते हैं, मेरी कथा में तो घड़ी हिला हिला के देखते कि चलती है कि बंद हो गई है। इस यहां अच्छा रखा है, पीछे रखा है, मैं ही देख सकता हूं टाइम। समझ में आया? प्रबोध समय गुरु मूर्ति, गुरु कोई होता नहीं है, स्वामी होगा साधु होगा। जब हमारी बुद्धि में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए जो सहायता देता है उसी का नाम क्या है? गुरु। गुरु व्यक्ति ने है, गुरु इज अ रोल टू प्ले। यहां जो मुझे उपदेश करके जिन्होंने मेरे मुझे जगाया है, किससे जगाया है? अनादि काल से मैं ये जगत को सत्य मान के उसमें बह रहा था, उससे मुझे आत्म तत्व की ओर जगा दिया और ये जगत मेरे से अभिन्न है, मिथ्या है, ये बोध करा दिया उस गुरु मूर्ति। और ये गुरु मूर्ति जो है वही मेरा भी आत्मा है। गुरु और आत्मा दो नहीं है। आत्मा का बोध कराने वाला गुरु, गुरु भी क्या है फिर? दूसरा है। गुरु कहता है जो मेरा आत्मा तेरा आत्मा सर्व का आत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। इस प्रकार का बोध करने वाले कौन है? दक्षिणामूर्तये। ये दक्षिणामूर्ति भी वही मेरा आत्मा है। जो ये ज्ञान कराने वाला सब गुरु क्या है? दक्षिणामूर्ति। प्रातस्मरणीय महाराज श्री का पूर्णानंद स्तव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो महाराज जी ने कहा, कई बार जब महाराज जी अपनी मस्ती में होते थे नए नए श्लोक ये रचना करते जाते, कई बार मुझे भी लिखवाया उन्होंने, तो कहते हैं कि जितने पूर्णानंद स्तोत्र में जो गुरु की महिमा है वो तीनों काल में जो भी गुरु है उसकी स्तुति की गई है, कोई व्यक्तिगत गुरु की नहीं है।
तो सब गुरु में जो गुरु तत्व है वो कौन है? साक्षात शिव है, साक्षात दक्षिणामूर्ति है। मैंने कह दिया दक्षिणा का अर्थ ये भी होता है जो शिष्य को उपदेश करने में दक्ष है, कुशल है। दूसरा, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके बैठे हैं वो दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति सदाशिव हमारा ही आत्मा है। और सदाशिव का आत्मा क्या है? मैं हूं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरा ये नमस्कार है। अभी एक प्रश्न होता है, आज मैं प्रश्न छोड़ के आपको छोड़ने वाला हूं, कर उसका उत्तर दूंगा। अभी आप देखिए दर्पण में जो नगरी दिख रही है वो दर्पण से अभिन्न है, इसलिए मिथ्या है। हमारी चित्तवृत्ति में भी, हमारे चिदात्मा में भी जो जगत दिख रहा है, स्वप्न जगत भी आत्मा में ही दिखता है, जागृत जगत भी कहां दिखता है? आत्मा में ही दिखता है। कभी ध्यान में बैठो तो मन में प्रश्न पूछना कि मुझे शब्द सुनाई रहा है, इस शब्द में कहां सुन रहा हूं? कान में कि मन में कि आत्मा में? आप ये प्रश्न का उत्तर अपने आप देखते जाओगे तो ध्यान हो जाएगा। यू आर हियरिंग दिस साउंड, इन हियरिंग देयर इज नो एफर्ट। सुनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लिखने के लिए प्रयत्न है, बोलने के लिए प्रयत्न है, ये इच्छा पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक किया जाता है। सुनने में हमारी इच्छा हो कि ना हो शब्द कान में पड़ते हैं, मन जागृत है, मन वो शब्द को ग्रहण करता है। मन में भी जो शब्द है वो सुनाई रहा है किसको मालूम पड़ता है? हाँ, आत्मा को मालूम पड़ता है। माने आखिर ये जो मैं शब्द उच्चारण कर रहा हूं वो कहां ग्रहण हो रहा है? आत्मनि चिदात्मनि। ये रूप दिख रहा है वो कहां मालूम पड़ रहा है? आत्मनि। एक गंध मालूम पड़ती कहां? चिदात्मनि। ऐसे जागृत जगत कहां मालूम पड़ता है? आत्मनि। जैसे नगरी तो दर्पण से अभिन्न है, ऐसे ये जागृत जगत भी जो, स्वप्न जगत भी जो आत्मा में मालूम पड़ता है वो आत्मा से क्या है? अभिन्न है, इसलिए क्या है? मिथ्या है। कारण अनन्यत्वम मिथ्यात्वम। घड़ा मिथ्या इसलिए है कि मिट्टी से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं है। जो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर पराधीन हो उसको मिथ्या कहते हैं। ये कुर्सी भी लकड़ी के बिना नहीं है, ये कपड़ा भी सूत के बिना नहीं है, ये कुंडल भी सुवर्ण के बिना नहीं है, ये पानी की तरंग भी पानी के बिना नहीं है। तो पानी है, तरंग है, तरंग नहीं है, पानी है। पानी तरंग पे आधार नहीं रखता है, तरंग पारी पे आश्रित है, इसलिए वो सत्य है। अत्वप ने मानता था जगत पे मेरा, मैं जगत पे आधारित हूं। अब मालूम पड़ा जगत का आधार क्या है? मैं हूं, मैं हूं, जगत है, जगत नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है। ये जगत का मालूम नहीं होता है, स्वप्न में भी मालूम नहीं पड़ता ये जगत, फिर भी मैं हूं, अहम अस्मि। इसलिए ये जगत मिथ्या है, मैं सत्य हूं। और सत्य पर मिथ्या का कोई भार नहीं होता है, और सत्य वत्ता मिथ्या करेंगे तो दो नहीं होता है, क्या होता है? एक ही होता है। सत्य मिथ्या से डरता है कि नहीं? अरे घड़ा तू नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, अरे ये चीज नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा, अरे मारो गोली, सबके बिना तुम रह सकते हो। महाराज ने एक दिन हमको बताया कि ये जागृत की जितनी चीजें हैं
वो सुषुप्ति तक तो पहुंचती नहीं है, तो ये कौन सी महान चीज है? और इनको छोड़ने में आनंद आता है कि पकड़ के रखने में आनंद आता है? आपको नींद आती है उस समय याद आती है मेरी तिजोरी में 100 तोला सोनी है, 100 तोला मालूम है, मेरी तिजोरी में 100 तोला सोना है, सुवर्ण है, और मैंने ठीक बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया है, कोई उठा के ले जाएगा। जब तक सुवर्ण का ख्याल रहेगा, गहने का ख्याल रहेगा, आपको नींद आएगी? आप एक बार जाके चेक कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी मुझे लगता है कोई चोर आएगा, नींद नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? एक गोली खाएंगे। गोली किसके लिए? इसको भूलने के लिए। तो जगत छोड़ने पे सुख होता है कि पकड़ने पे? आप लोग कुछ बोलते नहीं मेरे हैं महाराज, आपको छोड़ने में सुख होता है 8:30 बजे तो एक प्रवचनकार कह रहा था, हमारा जब प्रवचन पूरा होता है तो लोग बड़े खुश होके जाते हैं तो भाई बताओ, छोड़ने का सुख है कि पकड़ के रखने का है? जो स्वप्न तक नहीं रहता है, सुषुप्ति में छूट जाता है, और सुषुप्ति में आपको आनंद आता है कि दुख होता है? कई लोग अभी भी उत्तर नहीं देते, सो रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना मजा आ रहा है, मान लीजिए सुषुप्ति तक तो रहता नहीं है, तो फिर आत्मा में कहां से होगा? ये जगत में मेरा का चिंतन करते करते हम ऐसे फंस गए हैं। तो सत्य मैं हूं, ये सब मुझ पर आधारित है, मैं इन पे निर्भर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब प्रश्न उठा जो कल का टॉपिक होगा। तो महाराज जी आप कह रहे हैं अब दो चीज हो गई, ये जो दृश्यमान नगरी है वो किसने बनाई, ये जगत किसने बनाया? मैंने और आपने तो नहीं बनाया, एक तो पक्का है कि नहीं? ये जगत था, उसमें हम पैदा हुए, कि जगत को पैदा करके आप उसमें आए? जगत था, सब संबंध करने वाले थे, मेरा बेटा आ रहा है करके बाप तैयार था, मेरा भाई आ रहा है करके भाई बड़ा तैयार था, मेरी बहन, सब लोग तैयार थे, जगत था, मां बाप भी थे, मैं वहां गया। इसलिए ये जगत किसने बनाया, जिसका प्रतिबिंबन आत्मा में हो रहा है, वो जगत कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब उत्तर बाकी रह गया। इसलिए इसके बाद के श्लोक में ये जगत जो है वो जगत कर्ता ईश्वर किस प्रकार से ये जगत का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रकट करते हैं, और जगत और उस ब्रह्मात्मा में क्या संबंध है, वो भी मिथ्या सत्य का संबंध है कि दोनों सत्य है, जितना जगत सत्य इतना ही ब्रह्म तत्व सत्य है, दो सत्य समान है कि अलग है, इसकी चर्चा करने के लिए अगला श्लोक पढ़िए। बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदम्, धीरे से, बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया

0: ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम
1: नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. ओम नमः शिवाय।
2: ये सॉरी का मतलब करने का पछतावा नहीं है, अपितु गलती नहीं करने की वो प्रतिज्ञा है। भैया आप दोबारा गलती नहीं करूंगा मैं, ऐसा थोड़ी का आप लात मारते जाओ और हर बार सॉरी बोलते जाओ। नहीं हो, लोग ऐसा करते हैं, गलतियां भी कर लेंगे सॉरी भी बोलते जाएंगे। सॉरी का मतलब होता है कि अब दोबारा हम ये काम नहीं करेंगे। वहां थोड़ी सी गलती होगी और महाभारत के युद्ध का वही सूत्रपात था। यदि दुर्योधन को वो शब्द नहीं बोला होता तो उन्होंने कभी द्रौपदी का चीर हरण नहीं किया होता, वही कठोर शब्द था वो। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप वाणी पर यदि नियंत्रण नहीं किए तो यही वाणी आपके दुख को निर्मित करेगी। आपकी हर क्रिया, आपका हर सुख आपके दुख से मिला होगा यदि आप सही ढंग से नहीं चलोगे। इसलिए स्वर्ग का अर्थ होता है कि आप ऐसा आचरण कीजिए, ऐसा बोलिए, ऐसे सुख पैदा कीजिए जिस सुख के साथ आपका दुख मिला हुआ न हो। जिस सुख के द्वारा कोई दुख पैदा न हो वो ऐसा सुख, वो सुख स्वर्ग सुख है। और न च ग्रस्तम अनंतरम, और वो लंबे समय तक भी दुख के साथ जुड़ा हुआ न हो, तत्क्षण भी वो दुख को पैदा न करे। और ऐसा कोई काम न करे हम कि आज हमने ऐसा कोई गलत काम किया जो कल हमको दुख दे। आज तो सुखी हैं, लेकिन मान लो कि कोई किसी ने मर्डर कर दिया या कोई चोरी कर दी, कोई सरकारी संपत्ति आदमी ने लूट ली। आजकल जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा है, भ्रष्टाचार, अरे वर्तमान में तो सुखी हैं आप, लेकिन पकड़े जाने के बाद, अरे भाई आप आज नहीं तो कल तो पकड़े जाएंगे ना, यहां नहीं पकड़े जाएंगे तो ऊपर तो पकड़े जाएंगे। आपने बेईमानी की है तो बेईमानी का जो फल है आपको तो मिलना है। आज आप सुख भोग रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी। अंतरात्मा, एक कोई भगत थे, बड़े अच्छे श्रोता थे, वेदांत कुटीर के श्रोता थे, बड़े प्रतिष्ठित ट्रस्टी भी रहे वहां। जब वो शरीर छोड़ने लगे, करीब 90 साल की उम्र थी, और वो निरंतर सत्संग करते रहते थे, सुबह शाम आते, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने एक बात बड़ी अद्भुत बताई हमको। उन्होंने कहा कि महाराज ये बात, दरवाजा बंद करवा दी, और उन्होंने कहा कि एक बात है कि मैं और किसी को नहीं कह सकता हूं, ये बात केवल आपको कहना चाहता हूं, और आप ऐसा कुछ करो मेरे लिए। बोले मैं अभी न जिंदा हूं और न मरा हूं, और मैं वो सारी चीजें याद कर रहा हूं मैंने मेरे जिंदगी में की हैं, और सबसे ज्यादा चीजें वो मुझे दुख दे रही हैं जो चीजें मैं गलत समझता हूं। कहीं किसी को ठगा, मालूम है ना आदमी को, आप जब किसी को ठगते हो तो भले दूसरे को मालूम नहीं तो आपको तो मालूम है ना, आप अपने से कैसे ठगोगे, आप किसी भी चीज को अपने से कैसे छिपाओगे। आप दुनिया के दृष्टि से छिपा लेंगे लेकिन आप अपने नजर से अपने पापों को कैसे छिपाएंगे। अंतरात्मा को तो मालूम है आपने ये काम किया है। बोले ऐसी चीजें हैं कि बोले मेरे परिवार को भी मालूम नहीं जो मैंने किया है, अब वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, अब क्या करूं। अब तो मैं मर भी नहीं पा रहा हूं, सोने की तो बात ही छोड़ो, भाई रात रात भर सोता नहीं, वही चीजें दिखाई देती हैं, समझ गए कि नहीं। आप जो भी करते हैं उसका फल आपको मिलता है, इसलिए आप ऐसा कोई काम न करें जो कल भविष्य में आकर के आपको दुख दे। न च ग्रस्तम मनंतरम और अभिलाषोपनीतम च, आप चाहे और वो चीज मिल जाए, ऐसा काम करो। आपकी इच्छा हो जाए और आपको तत्क्षण वो चीज मिले, ऐसी आपको व्यवस्था करनी चाहिए, उसी को कहते स्वर्ग का सुख। ऐसा ये श्लोक है, तत् सुखम स्वपदास्पदम, स्व माने स्वर्ग, उसको स्वर्ग बोलते हैं। आप इच्छा मात्र से मिलने का अर्थ क्या है? अच्छा, मैं सामान्य दृष्टांत में बता देता हूं, सामान्य बिल्कुल दृष्टांतों में। आपने इच्छा की, आप सास हैं, हा? और आपने बोला बहु पानी आ जाए चट से, समझ में आया? आप पिता हैं और आपने बोला बेटा पानी, और पानी नी बोले नहीं तब तक पानी पहुंच जाए आपके सामने, तो आपको ये रिश्ते डेवलप करना है, ये सारी चीजें आपको बना लेनी है, बना आचरण से, पुरुषार्थ से, और ये असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। आप प्रारंभ से ही अपने आचरण को उदार, क्षमाशील, उदार क्षमाशील आप बनाए रखेंगे, सब लोग आपसे प्रेम करेंगे, सब लोग आपके प्रेम, सब लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप कितने लोगों की मदद करते हैं? आपको सब स्वीकार करेंगे, लेकिन आप कितने लोगों को स्वीकार करते हैं? उसको बोलते हैं स्वर्ग। और ये अपने पुरुषार्थ से निर्मित करना है, आप ध्यान देना, हर चीज आपको अपने पुरुषार्थ से बनाना है, कोई चीज नियति से आपको नहीं मिलती है, और यदि नियति से भी यदि मिलती है तो वो नियति भी आपको ही पैदा करनी पड़ेगी। आज यहां बालक नचिकेता कह रहे ऐसा जो स्वर्ग, उस स्वर्ग को प्राप्त करने वाला जो कर्म विज्ञान पुरुषार्थ है उसकी शिक्षा हमको प्रदान करो। हाँ, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, पुरुषार्थ के द्वारा ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। आप ध्यान देके सुनेंगे, हमारे जीवन में तीन चीजें होती हैं, एक पुरुषार्थ, दूसरे भगवान, और तीसरा भाग्य। आप क्या सोचते हैं? जो भी चीजें हमको मिलेगी वो भगवान देगा, ये भी तो है ना बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा होगी तो मिलेगा, और ये भी बोलते हैं कि भैया वृंदावन चलोगे तो बोलेंगे भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे, ये भगवानवाद। और दूसरे भाग्यवादी आदमी सोचता है कि अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, और भाग्य में न होगा तो नहीं मिलेगा, ये भाग्यवाद है। लेकिन एक तीसरा पक्ष है पुरुषार्थ, बोले नहीं भैया आप जब कोई काम करेंगे ना तब आपको वो मिलेगा, पुरुषार्थ के द्वारा ही हर चीज आपको मिल जाती है, ये पुरुषार्थवाद है। तो आप इन तीनों में से कौन से, किसको श्रेष्ठ मानते हो? मैं आपको पूछता हूं, आप भाग्यवादी हैं, भगवानवादी हैं, क्या पुरुषार्थवादी हैं? तीनों मिक्सअप है क्या? अच्छा, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, पुरुषार्थ के बिना भाग्य और भगवान भी आपको फल देने में समर्थ नहीं है। आप यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भगवान भी आपको देना चाहे तो कहां से देंगे? एक कोई बालिका थी और वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रही थी, और वो प्रार्थना कर रही थी कि इंडिया की राजधानी मॉस्को हो जाए। तो आपको तो मालूम ही है कि इंडिया की राजधानी दिल्ली है, और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? मॉस्को, इंडिया की राजधानी मॉस्को हो जाए। पंडित जी बड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा कि बालिका क्या बोल रही, नजदीक गए, उन्होंने पूछा कि आप क्या बोल रही हो, क्या हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हो? उस बालिका ने कहा कि पंडित जी आप भी प्रार्थना कीजिए इंडिया की राजधानी मास्क हो जाए। क्योंकि आज ही मैं परीक्षा में ये बात लिख करके आई हूं। अब उसने परीक्षा में लिख दिया इंडिया की राजधानी मास्को, अब आप हनुमान जी से कितना प्रार्थना करेंगे तो इंडिया की राजधानी मास्को बनेगी? नहीं बनेगी ना। हाँ बन सकती है, वो केवल प्रार्थना से नहीं, उसके साथ आपका पुरुषार्थ हो। आप इतना पुरुषार्थ, संपूर्ण राष्ट्र मिलकर, संपूर्ण समाज मिलकर जब आप पुरुषार्थ करें, सुव्यवस्थित आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, भौतिक वैज्ञानिक विकास, और समृद्ध भारत बनाने के बाद आप फिर अपनी सीमाएं फैला सकते कि नहीं? चाहो तो बना सकते हो, कोई असंभव नहीं है, है क्या? किण्वतो विश्वमार्यम, चाणक्य बोलते हैं ना, हम दुनिया को आर्य बनाएंगे। चाणक्य आप धारावाहिक देख रहे हैं ना, बड़ा महापुरुष था वो, बहुत महापुरुष। अब चाणक्य की जरूरत है अपने देश को, चाणक्य की प्रतिज्ञा थी, मैं दुनिया को क्या बनाऊंगा? आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ महापुरुष, चरित्रवान बनाऊंगा, दुनिया को मैं श्रेष्ठ महापुरुष बनाऊंगा, आर्य संस्कृति दूंगा मैं, ऐसा। आप अपने पुरुषार्थ से अपनी सीमाओं को आप फैला सकते हैं, लेकिन केवल आप प्रार्थना ही करते रह जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा तुम विजय चाहते हो तो तुम दोनों करो, पुरुषार्थ भी करो, युद्ध भी करो, और उसके साथ साथ मेरा स्मरण भी करो। माम अनुस्मर, माम अनुस्मर का अर्थ है स्वधर्म का आचरण, आप नैतिक कर्तव्यों का पालन करो, आप ईश्वर को, भगवान को अपने जीवन में अपना लो और पुरुषार्थ करो, तब जाके फिर आप सफल हो जाओ। और दूसरी चीज आपके जीवन में है भाग्य, है ना? आप जो करते हैं ना वही भाग्य तो बनता है, आप जो भी करते हैं ना वही भाग्य होता है। भाग्य का अर्थ होता है प्रारब्ध, ये थोड़ा शास्त्र की सूक्ष्म बातें हैं। आप जो भी करते हैं ना वो प्रारब्ध बनता है, आपके द्वारा ही तो आपकी तकदीर बनती है, वो कोई बन के ऊपर से थोड़ी आती है नीचे। आप जैसे पुरुषार्थ करते हैं वैसे वैसे आपका भाग्य बनता है, और वो भाग्य फिर आपको फल देता है, लेकिन उसके मूल आधार तो आप हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट हमारे जीवन में कोई चीज है जो भाग्य और भगवान से भी आगे, तो वो चीज है हमारे जीवन का पुरुषार्थ। और आज बालक निचिकेता कहते सुव्यवस्थित पुरुषार्थ करने के लिए कोई रूपरेखा भी तो होनी चाहिए, कोई प्रशिक्षण भी तो होना चाहिए। आप जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ते हैं तो क्या होता है मालूम आपको? आप पढ़ते हैं तो समृद्धि के रास्ते केवल आपको अवगत हो जाते हैं, और क्या होता है? आप पढ़े लिखे मतलब आपको समृद्धि को प्राप्त करने के रास्ते मालूम हो गए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का मतलब आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, और उस समृद्धि के रास्तों को आप खोज रहे हैं। आप डॉक्टर बन गए तो क्या है डॉक्टर भाई? आप डॉक्टरी के द्वारा आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, आप अपना नाम कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, ये समृद्धि का रास्ता सीख लिया आपने। आप वकील बने तो आपने समृद्धि का रास्ता सीख लिया, आप इंजीनियर बने समृद्धि का रास्ता सीख लिया। तो आप जब प्रशिक्षित हो जाते हैं तो प्रशिक्षित होने के लिए, प्रशिक्षित होना समृद्ध होने का तरीका भर है। तो आज बालक नचिकेता आचार्य यम को कह रहे हैं भगवान आप हमको समृद्धि के रास्ते बता दो। हाँ बड़े प्रसन्न हो गए हा? और प्रसन्न होकर के यहां पर उन्होंने कहा कि मैं तुमको बहुत सारी चीजें दे देता हूं। और यहां तो लिखा है कि यहां एक सांकेतिक वर्णन है, ये कठोपनिषद में जो वर्णन है ना सांकेतिक वर्णन है। उन्होंने कहा कि तुम अपने समाज को कैसे समृद्ध बना सकते हो, मैं अनेकों मार्ग तुमको बता दूंगा, ये मार्ग वो मार्ग, यहां उल्लेख नहीं किया है उसका, है ना? यहां क्योंकि इनको कहना तीसरे वर्ग के बारे में ज्यादा कहना है, इनको तीसरी बात को ज्यादा उठाना है, इसलिए दूसरी बात को उन्होंने केवल संकेत भर कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमको मैं अनेकों मार्ग ये बता देता हूं। तीसरा वर यज्ञ विज्ञान के रूप में, आप जो यज्ञ यज्ञ श्रवण करते हैं ना, यज्ञ याग हवन आदि, ये सारी चीजें आचार्य यम ने बालक नचिकेता को बता दी। और इतने प्रसन्न हुए आचार्य यम, उन्होंने बालक नचिकेता को कहा, नचिकेता ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं ना, लोग उसको नाचिकेतस विज्ञान के नाम से भी जानेंगे। इस यज्ञ विज्ञान को मैं तुम्हारा नाम भी दे देता हूं। कितने खुश थे आचार्य यम बालक नचिकेता के ऊपर। इस प्रकार उन्होंने दूसरे वर के रूप में यज्ञ विज्ञान संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए उन्होंने दे दिया। अब ये तीसरा जो वर है ना, तीसरा ये आत्म विषयक है, अपने लिए आत्मज्ञान की मांग की उन्होंने। अब ये विषय मैं अगले साल के लिए छोड़ देता हूं, ये विषय मैं अगले साल के लिए छोड़ देता हूं कि तीसरे वर के रूप में आचार्य यम को उन्होंने क्या मांगा और उन्होंने उनको क्या दिया। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। अब मैं थोड़ा आपके साधना के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। आप प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, आप जप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो करने के बाद भी आपको उसका फल मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। तो आप कोई काम करें और उसको सफलता तक पहुंचाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको एक चीज बता देता हूं, तीन चीजें हम अपने जीवन में सुनते रहते हैं। आपको आगे बढ़ना है तो आप कठोर पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ के साथ आप अपने मन को लगाओ, एकाग्रता रखो, और तीसरी चीज है नैतिक चरित्र, उसको भी अपने जीवन में धारण करो। ये तीन चीजें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। नैतिक चरित्र भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी रास्ता अपना रास्ता भटका देता है। यदि नैतिक चरित्र आप में नहीं है तो आप आपका रास्ता भटक जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और आप में एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता का मतलब आप जो काम अपने हाथ में ले उसको सफलता तक पहुंचाए बिना आप उस रास्ते से अलग ना हो, वो एकाग्रता बोलते हैं। आप प्रवचन सुन रहे हैं तो आप अच्छी प्रकार से प्रवचन ही सुनो अपने मन को लगा करके, इसको एकाग्रता बोलते हैं। आप पढ़ रहे तो आप पढ़ो मन लगा के, चल रहे तो आप चलो ही केवल, आप जब भोजन कर रहे हो तो आप कम से कम भोजन ही करो। आदमी बड़ा उठपटांग आदमी है, भोजन करता है तो कुछ और करता है, इसलिए अच्छी तरह से भोजन भी नहीं कर पाता है। भोजन करते समय आदमी को पूरा अपने मन को भोजन में डाल देना चाहिए, तब खाओ बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो आपका मन इधर जा रहा है उधर भाग रहा है, तो आप भोजन का आनंद भी नहीं ले पाओगे। इसलिए ये सूत्र है, जिस समय जो काम करना है वो आप मन लगा के करो, ये आपका दूसरा सूत्र है एकाग्रता, इसको एकाग्रता बोलते हैं। और पुरुषार्थ, ये तीन चीजें आपके जीवन में सफल होने के लिए और सफलता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये बीच वाली चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, एकाग्रता, ये हमारे जीवन में पुरुषार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप श्रवण कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, आप कितना मन लगा के श्रवण कर रहे हैं वो बड़ी बात है। आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हैं, लेकिन आप कितना मन लगा के सुन रहे हैं ये बड़ी बात है। कई बार आदमी ऐसा बैठा तो रहता है मजबूरी में, कहां से उठा के लाए बैठा दे जबरदस्ती, राम राम राम। आदमी कई बार जबरदस्ती ला के बैठाया जाता है, बैठो भैया सुनो प्रवचन। आदमी सोचता है अरे बैठ गए, जाने का कोई रास्ता भी नहीं, अब क्या करें। आप सुन रहे हैं वो बड़ी बात है, आप कितने एकाग्रता से सुन रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कितना एकाग्रता से कर रहे हैं। एकाग्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिसको ध्यान बोलते हैं ना, ध्यान, वो ध्यान और कुछ नहीं, वो एकाग्रता ही है। आप जप करते हैं एक माला दो माला, और मैं आपको बताऊं, मैं प्रतिदिन आपको चार माला जप करा रहा था, लेकिन मैं आपको एक ही बोल रहा था। मुझे लग रहा था कि आप कहीं ये ना बोल दो कि महाराज दो चार मालाएं ज्यादा हो रही हैं, इसलिए मैं बोलता था एक ही माला जप करता हूं मैं। आप जब जप करते हैं ना, तो उस समय आपका ध्यान पूरा जप में होना चाहिए। आप जब भी आप जप करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, उस समय सीधे बैठना चाहिए। एक विधि है कि आप सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठने के बाद आप ये आपकी श्वास है ना, श्वास आप अपने मन को श्वास के ऊपर ले जाएं और श्वासों के साथ फिर आप जप कीजिए। आपने कल मुझे प्रश्न किया था कि आप थोड़ा ध्यान जप के ऊपर भी थोड़ा बताएं तो अच्छा होगा। आप जप कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप सीधे बैठे हैं और सीधे बैठने के बाद आप श्वास ले लीजिए, आप श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और श्वासों के साथ आप जप कीजिए। आप श्वास खींच रहे हैं अंदर तो आप अब भगवान का नाम लेते लेते लेते आप जितने बार, एक बार, दो बार, आप जितना ले सकते हैं। और जब आप बाहर जब श्वास करते हैं ना तो उस समय भगवान का नाम लेते, श्वासों के साथ भगवान का नाम बाहर आता रहे। जैसे आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो आप श्वासों के साथ अंदर ओम नमः शिवाय, हाँ आप बोलिए मत, हम तो यहां बोल के जप कर रहे हैं। आप अकेले जप कर रहे हैं तब की विधि में बता रहा हूं, आप अकेले बैठ जाइए और श्वास को खींचते हुए मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप अंदर श्वास ले रहे हैं। फिर आप श्वास जब बाहर छोड़ रहे हैं ना तो उस समय भी आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दो मंत्रों के बीच में थोड़ा आपको गैप रखना चाहिए। आप जब करते हैं दो विधियां, एक सस्वर और दूसरा थोड़ा गैप देगी। जैसे मान लो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तो एक स्वर बना रहे हैं और उस स्वर में अपने स्वर को मिला रहे, ये भी एक विधि है। और आप मानसिक जब जब करते हैं ना तो आप दो मंत्र के बीच में थोड़ा सा गैप रखो, आप ओम नमः शिवाय जपो और रुक जाओ और उन दो मंत्रों के बीच में जो गैप है ना वो निर्विचार है, वहां कोई विचार नहीं है, उसको देखो शून्य है वो। और उसके बाद फिर दूसरा जपो, उसके बाद थोड़ा गैप रखो, उसको शून्य है बीच में, निर्विचार, वहां कोई विचार नहीं है। आप जब दो मंत्रों के बीच के गैप को देखते हैं तो आपको निर्विचार माने विचारों पर नियंत्रण करने की एक शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है। इसलिए आप जब भी जप करें तो आप सांसों के ऊपर अकेले बैठकर, और नारायण आप इसका जप आप केवल 3 मिनट भी करते हैं, आप प्रतिदिन 3 मिनट साइलेंट हो जाओ, बैठ जाओ, 3 मिनट तो कोई ज्यादा नहीं होता है। और आपको कोई जरूरी नहीं कि आप आसन लगा के बैठो खड़े खड़े, आप खड़े हैं आंख बंद कर लो, आप कुर्सी पर बैठ जाओ, आपके पास यदि सुविधा है तो आप मंदिर में बैठ जाओ, अपने घर में भगवान है वहां बैठो, आसन लगा के बैठो 3 मिनट, ज्यादा नहीं है 3 मिनट, जब ज्यादा टाइम तो 5 मिनट करो, आगे बैठने में 1 मिनट चला गया, उठने में 1 मिनट चला गया, करने में 3 मिनट, आप 5 मिनट आप भगवान के लिए दो। आप सीधे बैठो और अपने श्वासों के ऊपर नियंत्रण रखो, अपने श्वासों पर दृष्टि डालो और श्वास अंदर लेते समय भगवान का नाम लेते लेते अंदर और नाम को लेते लेते श्वास को बाहर करो। ये श्वासों के साथ भगवान का नाम लेना है और उस समय आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। और ये करते समय अपने को विचारों में भी बदलाव बहुत जरूरी है, इसलिए सत्शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। आपको यदि आगे बढ़ना है तो सफल हुए लोगों की जीवनियां पढ़िए आप, और असफल हुए लोगों की जीवनियां भी पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि असफलता कैसे हुई। आप सफल लोगों की जीवनियां पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उससे सफल कैसे होना है। संत महापुरुष स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तियों का चरित्र पढ़िए आप, चरित्र, आप उसका लिटरेचर पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान नहीं होगा, आप उसका चरित्र पढ़िए, उनका जीवन दर्शन पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि ये जीवन उनका कैसे आगे बढ़ा। तो आपके विचारों में परिमार्जन आ जाता है, आपको परिवार में रहना आता है, आपको समाज में रहना आता है, आपको अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना, ये विधि आपको मालूम पड़ती है। आप परिवार में तो रहते हैं लेकिन आपको परिवार के साथ कैसे रहना है यह नहीं मालूम आदमी को। आज का आदमी बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसको समाज में कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना है उसको थोड़ी मालूम है। और मालूम होता तो आज ये परिवार ही नहीं बिखरता। आज आदमी इतना बेवकूफ बना हुआ है कि एक परिवार में 4 लोग भी नहीं रह पा रहे प्रेम से। पहले 100-100 लोग एक परिवार में रहते थे, 50-50 एक परिवार में, और अभी तो भाई भाई भाई की दो बीवियां, उसके चार बच्चे, 10 लोग हैं घर में, ये भी नहीं रह पा रहे। हम 10 लोग भी एक साथ नहीं रह रहे, तो आप कल्पना करो कि हम आगे बढ़ गए कि पीछे खसक आए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, करोड़पति, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां, सब कुछ है, और आप एक परिवार में 10 लोग भी अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। प्रेम से आप 10 लोग भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़े, आप पीछे खिसक गए। आप अपने माता पिता पूर्वजों को सुनना, 25-25 लोग रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। और आज हम इतने पढ़े लिखे, सारी सुविधाओं में होते हुए भी हम आज 10 लोग एक जगह पर नहीं रह पा रहे। इसका मतलब है कि हम कहीं कोई चीज खो चुके हैं नारायण, और वो चीज है समझदारी। हम समझदारी खो चुके हैं, भले हम पढ़े लिखे हैं लेकिन जीने की समझदारी नहीं है। लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे सहनशील बनना है, कैसे क्षमाशील बनना है, वो सारी विधियां नष्ट हो गई। इसलिए आप जप करो, जीवन में समझदारी, विवेक, क्षमा, दया, ये भावनाएं रखो, तो आपका जीवन बड़ा सुखी होगा, समृद्ध होगा। नारायण, अभी आप सीधे बैठ जाए। अब प्रतिदिन की भांति हम लोग आज तो दो माला का जप करेंगे, आज तो पक्के दो माला जप करेंगे। ये 15 दिन हम लोग यहां बड़े आनंद से कठोपनिषद का श्रवण किए, और प्रेमपुरी आश्रम अपने आप में बड़ा समृद्ध है, यहां के श्रोता बड़े समृद्ध हैं। समृद्ध का अर्थ है यहां समझदार हैं, दैनिक प्रवचन श्रवण करते हैं, और ऐसे समृद्ध श्रोताओं के बीच में प्रवचन करना अपने आप में एक सौभाग्य का क्षण है। मैं समस्त आप श्रोताजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ट्रस्टीगणों को जिन्होंने बुलाया, आमंत्रण दिया, उनको भी। अभी आप सीधे बैठ जाएं और एक माला जप करेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।